0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: जरा ओढ़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. सुप्रभात. घर में रहते चलिए. सुबह की ठीक 5 बजे हैं. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन.
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
2: आरएम2
0: रेडियो.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: जिंदगी में बस कुछ ऐसा ही सिचुएशन आना चाहिए जहां पर आप सावन बने तो कुछ लोग प्यासे हो जाए. मतलब कहना तो हम यही चाहते हैं कि ज़िंदगी में यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी वन ताकि ज़िंदगी का गुजारा और भी आसान हो जाए. सुबह के 5:04 हो चुके हैं. विशिंग यू लवली लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं दैट यू हैड अ ग्रेट एंड अ प्रोफाउंड स्लीप. और वैसे कहते हैं ना कि आप जल्दी सोने जाते हैं तो आपको जल्दी भी उठने का मौका मिलता है. अगर आप का जो टाइमिंग होता है सोने का तो वो थोड़ा सा अगर हिल जाए तो सुबह उठने में तकलीफ़ हो जाती है, स्पेशली इस विंटर सीजन में. अगर आप लोग इस वक्त उठ चुके हैं काम पर जाने के लिए, आपको विश करेंगे भूख हाज. प्लीज़ प्लीज़ डू टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन. बस स्टॉप तक जाएंगे चलकर तो अपने साथ एक शॉल, एक छाता या फिर अपने साथ एक पुलोवर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ मच प्रोटेक्टेड. और आजकल तो सीजनल फ्लू के चलते भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तरफ से अपना पूरा पूरा प्रिकॉशन लेंगे. ऑलराइट, चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 तक. इन योर राइज एंड शाइन आपके मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल, सुबह सवेरे आपके मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुंच रहे हैं और चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशन की ओर. एंड डोंट फॉरगेट इट्स योर राइज एंड शाइन जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 AM. गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट गाना गुजार फॉर पूनम तुलसी और वोशनो विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम करुणा. एंड यहाँ पर आप कहते हैं गुड मॉर्निंग इनोसेंट पीपल आर नॉट स्टूपिड दे जस्ट थिंक एवरीवन हैज़ ए गुड हार्ट. और वैसे कहते हैं ना कि जिस तरीके के का स्वभाव आप रखते हैं उसी तरीके का स्वभाव आप दूसरों में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों में आपको अच्छाई दिखाई देगी. सो आपने बिल्कुल सही कहा टोनी जी. आप हैं खुशबुआ से. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दिव्या जी. विशिंग ऑल RM2 लिसनर्स हैप्पी वेंसडे एंड लॉर्ड गणेशा'स ब्लेसिंग. सो साथ में यहाँ पर हम अगला गाना डेडिकेट करेंगे फॉर ज्ञान बिहारी जी. आपकी वाइफ है सबीता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव, सुनील एंड रानी के लिए. आप कहते हैं गुड मॉर्निंग नीतू. नीतू नहीं बल्कि दिव्या साथ दे रही है. नेक्स्ट गाना गुजार फॉर अब्दुल एंड सैरा बानू. हैव अ नाइस डे टू यू एज वेल. एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर किशन राम भरोसी फ्रॉम वालिदे फैत चित्रकूट कनेक्टेड विद अस. हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस डे. आपको भी जय सी आराम. तो नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम और तमाम उन सुनने वालों के नाम जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, 5:35 हो चुके हैं. चलिए बढ़ते हैं कुछ और आपके मैसेजेस डेडिकेशंस की ओर. चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली आपके नाम. हाय दिव्या, नाइस सिलेक्शन. विश यू अ वंडरफुल डे अहेड फ्रॉम अमृता पोइतुसाबल. थैंक यू सो मच अमृता जी एंड गुड मॉर्निंग. और आप कहते हैं कि वी वुड लाइक टू विश हैप्पी बर्थडे टू माई नीस ममता लुबिन बिकारी ऑफ फ्रॉम पुपू साधना इमृत और साथ में पुपा मुकेश हैं और लालमाची. उनको बहुत बहुत सारा प्यार. ओम श्री गणेशाय नमः. नमस्ते जी, आज मेरे प्यारे वंश का बर्थडे है. उनको बहुत सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद फ्रॉम दादा लालदेव, दादी सुया, पापा विक्की, मामा कीर्ति, दीदी अवनी, फूफू श्वेता, फूफा रोशन, हुकुम फैमिली, टिप्सी फैमिली की तरफ से आप हैं सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा. थैंक यू सो मच सुया जी हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद तैयार होते होते हमारा साथ दे रहे हैं और थोड़ी देर में शायद काम पर निकल जाएंगे. एंड बस उम्मीद करते हैं कि ये वेंसडे आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही प्यार भरा रहे. एंड चलिए यहाँ पर एक स्पेशल डेडिकेशन है फॉर समवन वेरी स्पेशल. यस, वी वुड लाइक टू विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अंजनी जी ऑफ वेल जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ. आज आपका स्पेशल डे है एंड वी जस्ट होप दैट ये स्पेशल डे आपके लिए बहुत बहुत ही हद से ज़्यादा खास हो. एंड मे योर बर्थडे बी एज स्पेशल एज यू आर. एंड हम आपको बहुत सारा प्यार विश कर रहे हैं आपके स्पेशल दिन में. एंड वी जस्ट होप कि आप जियो हज़ारों साल इसी तरीके से अपने परिवार वालों के साथ रहे और खुशियाँ बांटते रहे और अपने बच्चों के साथ रहे और अपनी ममता से बस उनको अच्छा फील कराएं. एंड वी जस्ट होप कि ज़िंदगी में आपको जो भी चाहिए वो आपको हासिल होता रहे. सो वंस अगेन अंजनी जी, आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और साथ में आपकी बेटियां हैं दिव्या, दिवेशा, वी हैव अखिलेश, केविन, आंशी, वरदान की तरफ से और आपका भाई है सतीश, साथ में रेनू, आपके भतीजा, आपका भतीजा है यश, भतीजी जानवी, सभी गंगा एंदन सु फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुश शुभकामनाएं. और ऐसे ही आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जहां पर भी आप जाए बस अपने प्यार का साया लोगों तक पहुंचाते रहे. तो चलिए अंजनी जी, वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: वेल 5:47 ऑलरेडी चले बढ़ते हैं आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर जानेंगे दिन के दौरान सितारों की हालचाल कैसे रहने वाली हैं। शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, आज किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है और सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भागीदारी रहेगी। किसी के साथ उलझना आपकी मान हानि का कारण बन सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बढ़ाएं। टोरस वृषभ राशि, अपने लक्ष्य को हासिल करने का अनुकूल समय है। सुखद दिनचर्या व्यतीत होगी। नकारात्मक स्थिति को शांति से सुलझाएं। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने के में संकोच बिल्कुल ना करें। जेमिनी मिथुन राशि, चल रही व्यवस्था से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी खास मित्र से मुलाकात प्रफुल्लित देगी। अत्यधिक खर्चों पर काबू रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर जितना हो सके ध्यान दें। कैंसर कर्क राशि, अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। विदेश जाने के लिए आ रहे अवरोध दूर होंगे और आर्थिक समस्या रह सकती है। आज किसी भी तरह की यात्रा स्वागत जो है इसका पूरा स्वागत करें और बहुत सारे स्कोप भी और अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे को खटखटाएंगे। लियो सिंह राशि, व्यावहारिक होकर कोई भी निर्णय लेना सफलता देगा। किसी नज़दीकी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी और गैर कानूनी

0: अपनी कार्यों से दूर रहें। युवा अपने भविष्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। वर्गो कन्या राशि, फोन के माध्यम से कोई लाभदायक सूचना मिलेगी। व्यक्तिगत कार्य समय पर संपन्न हो जाएंगे और बिना सोच समझे किसी से भी कोई वादा ना करें। युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियां समझें और अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है और भी आसान हो जाएगी। लिब्रा तुला राशि, हिसाब के मामले में चल रही समस्या दूर होगी। महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अपनी भावुकता और उदारता पर काबू रखें। किसी से भी कोई प्रॉमिस ना करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलेगी। नज़दीकी संबंधों का घर में आगमन होगा और गुस्से और जो ईर्ष्या है इस पर आप पूरा पूरा काबू रखें। अनावश्यक खर्च से बचें और बजट को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कीजिएगा। सैजिटेरियस धनुराशि किसी भी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। व्यक्तिगत कार्य भी समय पर संपन्न हो जाएंगे और आपसी मनमुटाव दूर करने में आपको ही प्रयास करने होंगे। आज यात्रा ना करें और जितना हो सके आप सुरक्षित रहें। कैप्रिकॉन मकर राशि, कहीं निवेश करना लाभदायक रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें। युवाओं को टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी, सो आप अपने एम को टारगेट कीजिए एंड कीप एमिंग हाई बिकॉज स्काई इज द लिमिट। अक्वेरियस कुंभ राशि, किसी भी विशेष कार्य में आ रही समस्याएं आज दूर हो जाएंगी। किसी धार्मिक आयोजन की भी योजना बनेगी। कानूनी मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें और घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करें। और आखिर में वी हैव पाइसेस मीन राशि, कहीं अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष उपलब्धि मिलेगी और युवा वर्ग अपने लक्ष्य पर फोकस रहें और विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखें। सो ये था आपका डेली हॉरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड best of luck.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: RM2, Radio Mastin.
1: If your equipment isn't properly set up, you might be missing some of the benefits that stereo can provide.
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे है। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज सुमेरा से। नमस्कार रादाब।
6: नमस्कार रादाब। हमारे जलाशयों में जल स्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कलाम हुई CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। मोगवाकवा में हालत काफी गंभीर है, जो सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनजर कई कदमों पर गौर किया जा रहा है। भारत की तरफ से मॉरिशस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास ढांचे की जरूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम अहम हैं। इस संदर्भ में लातूकेनिक नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। और ये भी जाने कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स लगते थे। विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अबनाए होर्मुज पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए। और उधर इसराइल ने दक्षिणी लबनान में कई जानलेवा हमले किए, बावजूद ये कि ईरान ने चेतावनी दी। लिबनानी विदेश मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल सुनिए।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह कुछ छींटे पड़ेंगे, खासतौर पर पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में। दूसरे इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और दक्षिण तथा ऊंचे इलाकों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। आज रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। हवा आज सुबह उत्तर की तरफ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पूर्व में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। दिन के दौरान समुद्र की हालत में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त 5:37 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब। शुभ दिन आप सभी को।
0: Your weather forecast on RM2
4: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
4: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जी हाँ दोस्तों, सुबह से सवेरे आपको यही करना है, आवाज़ बनकर लेट योर वॉइस बी हर्ड, ये लेट योर प्रेजेंस बी फेल्ट. और वैसे आप की जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है. सो जितना हो सके ट्राई टू मेक योरसेल्फ सो पॉजिटिव कि जितना आप लोगों के आसपास रहे, लोगों को बस ये वाइब मिल जाए और दे एंजॉय योर कंपनी. चलिए 6:10 हो चुके हैं. वंस अगेन अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. हेलो नमस्ते दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग. सरिता जी आप हैं गुडलैंड से, हैव नाइस डे डिया, थैंक यू, सेम टू यू. हेलो गुड मॉर्निंग, रिक्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति एंड हराक फैमिली ऑफ मोदालबे. प्रणाम जयशन जी, रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड है, हैव अ वंडरफुल डे आपको भी. एंड आप कहती हैं वॉन्ट टू विश आवर 37th वेडिंग डे टुडे एंड विशेज कमिंग फ्रॉम मिसेस मीरा एंड मिस्टर योग ऑफ गुडलैंड्स. आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड विश यू मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस. और ऐसे ही सुख दुख के साथ ही बने रहे, हमेशा आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे आपके नाम. कहती हैं हाई दिव्या गुड मॉर्निंग, सिलेक्शन इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं आप. एंड कहते हैं कि आप हैं प्रेमिला जी और प्रेमदी पापाई, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर किसने हमें कहा है कि गुड मॉर्निंग दिव्या एंड अली राइजेस, आपने सुबह सवेरे जो पहला वाला गाना डाला फरार का, मैं प्यासा तुम सावन, इट्स योर ऑल टाइम फेवरेट, एंड ये सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगा. चांदनी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. 2, 1, let's start the fun.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: एक बार फिर से बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. गुड मॉर्निंग दिव्या, आई वांट टू विश माय ब्रदर ऋषि एंड सिस्टर इन लॉ पूजा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस देम एंड मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस फ्रॉम रीना एंड बिसेस ऑफ फैमिली ऑफ बिलेर रिवियर सेश. एंड आप कहते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या जी, प्रोग्राम को एंजॉय करते हुए आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच. बॉम्बू से वी हैव धनेश्वर साहब, आपकी पत्नी सुनीता के लिए साथ में है देव, रेखा, मीना, ऋषि, तहान, हत्सवी फ्रॉम देवदस एंड सनीचर फैमिली. और साथ में आप कहते हैं कि नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर रीना संजीता अवकात को, डेडिकेटिंग अ ब्यूटीफुल गाना फॉर टू बेबीज प्रत्यूष दुर्वंश श्रिया श्रीना, आपकी मॉम है रेणुका दैट मनोज एंड हरदयाल फैमिली के लिए. आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट आया है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, you are having a great time listening to Radio Musti.

0: एंड चलिए इसी के साथ हम डेडिकेट करेंगे द नेक्स्ट गाना कुंगुमा से. वी हैव सोना, सुचिता, साहिल अंकुश एंड किंजल और साथ में मीला रामदिकल जी कनेक्टेड है फ्रॉम मोताई ब्लॉश आपकी बहन के लिए अगला गाना और आपके फ्रेंड्स के लिए. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर जो हमें लेकर जाएगा सुबह के 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर. वक्त ने इजाजत दी तो एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी जरूर, वरना वेदिता 7 आएगी लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग बीट.
1: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: नमस्कार आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट। CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोबा को सिर्फ 45.8% भरा। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकेंगे। प्रशिक हिरू मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। और इसराइल ने जनूबी लेबनान पर जोरदार हमले किए, 8 लोगों की मौत हुई। खुशामदीद, इस बुलेटिन में। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कल आम हुई CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोबाकुआ में हालत काफ़ी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनज़र कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए बोहोल्स, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क़याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के अध्यक्ष लोमिश जगू के मुताबिक अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। मुख्तलिफ साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए जा रहे हैं ताकि अवाम पर इस स्थिति के असरात को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। शैली नियाबन ने उनसे बात की है, उन्हें सुनते हैं आशिता रघु की ज़बानी।
1: एक बोहोल की खुदाई की परियोजना जल्द शुरू होगी, विशेषकर जहां इसकी जरूरत पड़ रही है। देश का जल स्तर काफी चिंताजनक है और इसके साथ साथ सेंट्रल प्लाटो के इलाकों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि महोबाकुआ जलाशय का जल स्तर लगभग 46% है, जहां आमतौर पर इसी अवधि के दौरान हम 85% के लगभग होते हैं। चंद सावधानी के कदमों में CWA की ओर से कंटेनराइज प्रेशर फिल्टर्स बिठाए जाएंगे, जहां पानी की छोटी धार है, वहां से पानी निकालकर ट्रीटमेंट के बाद पानी की कमी जहां हो रही है उन इलाकों में पानी का वितरण किया जाएगा और साथ ही पानी के वितरण की मांगों पर भी पुनः गौर करना होगा। जल्द ही इस संबंध में फैसले आम किए जाएंगे।
0: इस हालत के मद्देनज़र अधिकारी जनता से पानी ज़ाया ना करने की मांग करते हैं। और M1 पर लामाचिनाल के दौरान CWA के जनरल मैनेजर श्याम तानू स्टूडियो में 8:15 से एक इंटरव्यू के दौरान जानकारियां देंगे। भारत की तरफ से मुर्शस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 35 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की ज़रूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम अहम हैं। इस सिलसिले में लातूकेनिक में नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में ज़रूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहाँ एक दौरा किया। सांताना पोस्नो ने उनसे बात की।
2: Il y a 45 bus ici, ici il y a 13 la route et il y en a 9 charging bays. Rémi Ollier, qui m'a visité la dernière fois, il y en a 20 des bus qui roulaient depuis là-bas. Ici il y a 10 la route et il y en a 2 charging stations. Forestside, qui est un grand dépôt aussi, sous construction en ce moment. Et là-bas, il y en a 19 bus et 6 la route ici.

0: et qu'on a 9 charging stations. Là, il y a Rivière-du-Rempart ici, qui sont la tour électrique ici. Il passe pour lui, il prend pas sa fille à Rivière-du-Rempart le matin, il peut retourner. Là-bas, il y a 9 bus et 4 la route desservie.
1: इस दौरे के दौरान सेशल की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत भी मौजूद रहीं। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संदर्भ में मॉरिशस में हुई तरक्की का उल्लेख किया और पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अमल की भी सराहना की और ये जानी कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स थे। मेट्रो में अनुचित हरकतों और मेट्रो लाइन पर इलेक्ट्रिक सामग्रियों की चोरी के मुतालिक बढ़ती तादाद के सिलसिले में मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड कदम उठाने का दावा कर रही है। सवारियों की हिफाजत के लिए अपराधियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मेट्रो एक्सप्रेस ने इलेक्ट्रिक सामग्रियों को हाथ लगाने के खतरों के बारे में याद दिलाया, इसके चलते अब सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। बुजुर्ग और बेवा महिलाओं को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी के संदर्भ में नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पिछले 4 जून को हेमराज मनोहर और 5 जून को रमेश हेमराज की गिरफ्तारी के बाद एफसीसी ने फेसबुक पर कल एक पोस्ट में सूचित किया कि 12 शक की शिकार लोगों की सुनवाइयां हो चुकी हैं। फिलहाल करीब 40 लोगों से पूछताछ की जा रही है। एफसीसी मांग करता है कि जिस किसी के पास इस मामले में मालूमात हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को इतला करें। अन्य खबरों में, हिरन की शिकारी हर साल मॉरिशस में अहम आमदनी लाती है और इस साल 600 टन मांस प्राप्त करने का अनुमान है, जो प्रति किलो 350 रुपए में बेचे जाएंगे। इस संदर्भ में नया सीजन पहली जून से शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं ताकि सप्लाई हो और साथ में भागीदारों की सुरक्षा का आश्वासन भी हो। सोसाइटी डी शास्त्रीय से वैसों दारिफा ने कुछ स्पष्टीकरण भी दिए हैं। शबनी जुजिया वाहिद अली ने उनसे बात की, उन्हें सुनते हैं अशिता रघु की जबानी।
2: रविवार और सोमवार के बीच संघर्ष अचानक बढ़ने के बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले तुरंत रोकने का फैसला लिया है। दोनों पक्षों ने कहा कि अपनी अपनी तरफ से प्रहार नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि दोनों में से किसी ने भी इस फैसले का उल्लंघन किया तो भीषण जवाबी हमले होंगे। रविवार के मिसाइल
1: हम बाद में इस टेप पर ज़्यादा जानकारियां देंगे। अन्य खबरों में, अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहानों में ख्याल मुगसिया की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद 1:15 बजे से 2 बजे के बीच मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES जा सकते हैं। ये प्रक्रिया वहाँ जाकर पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए 526 रुपये और पर्चे के लिए 3499 रुपये लगेंगे। जो उम्मीदवार इसी पर्चे के लिए GCEO लेवल के लिए पंजीकृत हो चुके हैं उन्हें कोई फीस भरनी नहीं पड़ेगी। बालिगों को अपने साथ अपना ID कार्ड और ओरिजिनल जन्म पत्र लाना चाहिए, जबकि नाबालिगों को अपना जन्म पत्र और स्कूल का एडमिशन कार्ड और हालिया खींची 2 तस्वीरें लानी चाहिए, जिन पर एक नामवर व्यक्ति के दस्तखत होना चाहिए। प्रशिक हिरू मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। रविवार को महाराष्ट्र भवन मोका में नई प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। संकल्प दल से प्रशिक हिरू को 146 वोट मिले, जबकि चक्र दल से पूर्व अध्यक्ष बलराज नारू को 125। नए अध्यक्ष ने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र भवन के दूसरे चरण के निर्माण पर जोर देंगे। उन्हें सुनते हैं, राजमीरा सिंधामुनि ने उनसे बात की।
3: Construction de la Maharashtra Bhavan, deuxième phase, pour continuer en parallèle avec nouvelles activités qui nous habitent à faire. Quelques projets qui nous tiennent dans le manifeste électoral, c'est le Marathi Adult Online Classes, le Chhatrapati Shivaji Maharaj Challenge Cup au niveau régional et national, le APLA Trail, le National Art School et Caravane de Santé dans 4 coins de l'île.

विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अब नए हॉर्मुज पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए। उधर इसराइल ने दक्षिण लबनान में कई जानलेवा हमले किए, बावजूद ये कि ईरान ने हमला न करने की चेतावनी दी थी। लबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है।

और अब मौसम का हाल, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटो में कुछ चीते पड़ेंगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बादल घेराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। आज रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। आज सुबह हवा उत्तर की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पूर्व में 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट। CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोवाक्वा सिर्फ 45.8% भरा। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स थे। प्रशिक हीरू मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। और इसराइल ने जनूबी लबनान पर जोरदार हमले किए, 8 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए. डेबी स्ट्रीट फॉरेस्टसाइड में 66 साल के 66 years old श्री जैन मुचुराम, श्री जैन मुचुराम जो जैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और ताबाजी जैन के संचालक थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज दो बजे इनके भाई रॉय मुचुराम के घर डेबी स्ट्रीट फॉरेस्टसाइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. कात्र कारो ओकुले में 40 साल की 40 years old श्रीमती देवी गुतिया पैदाइशी नाम सानजैन जो देवी पैट्रिसिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज सुबह तीन बजे इनके रिश्तेदार पूनम पुरन के घर कत्रकारो ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाग्रेमों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. मोंटे एस कॉम्बिनोआ पिटी ट्रिविया में 86 साल की 86 years old श्रीमती विद्यावंती दिगम जो रमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे ललन रिडोय के घर मोंटे एस कॉम्बिनोआ पिटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो पिटी ट्रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. नंबर 77 नंबर 77 एटियन पेलो स्ट्रीट पोर्ट लुई में 81 साल के 81 years old जनाब स्वादिक बाई दौलत. जनाब स्वादिक बाई

0: भाई दौलत जो भाई स्वादिक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे के घर नंबर 77 नंबर 77 एथियन पेलगो स्ट्रीट पोर्ट लुई से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए अलक्सा मस्जिद प्लानवेत और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 नून। मोसर मामो गयाल कोरोमोंडेल में 84 साल की 84 years old श्रीमती सुभावती सियुदीन जो शांति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे इनकी बहू संध्या सियुदीन के घर मोसर मामो गयाल कोरोमोंडेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शौलू शुमैग्रोनी में 52 साल के 52 years old श्री हरीश चमन जो पुनैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10:30 बजे इनकी माँ शोभा चमन के घर कौशौलू शुमैग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। मॉस्क्रो रिश्मो फ्लाक में 95 साल की 95 years old बीबी जैतून अली बोकस पैदाशी नाम मगन जो दादी जैतून के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 10 बजे आज सुबह 10 बजे के घर मॉस्क रोड रिश्मो फ्लाक से उठाकर सबसे पहले रिश्मो की मस्जिद करतबा मस्जिद जनाजे की नमाज के लिए और फिर दफनाने के लिए रिश्मो का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड बुआशेरी में 84 साल के 84 years old श्री अनिरुद्ध गंगा जो गंगा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके भांजे कृष्णराज राधा किशन के घर रॉयल रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी गुजबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। डेमी ग्रोलिन प्लेन मान्यों में 51 साल के 51 years old श्री राकेश मातों जो पुपुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके घर डेमी ग्रोलिन प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन फोंजुसाक में 53 साल के 53 years old श्री राजेश कुमार बीरियों जो जेरो मोगल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे इनके पति प्रियादत्त बीरियों के घर स्कूल लेन फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजुसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड ख्वाबगा पिछी राफ्रे में 23 साल के 23 years old श्री मेहर शाम की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके घर रॉयल रोड ख्वाबगा पिछी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। फोबाक रोड फोंजुसाक में 82 साल की 82 years old श्रीमती पद्मावती रूपचंद जो छोटकी चाची के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे साइलेश मुरत के घर फोबाक रोड फोंजुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजुसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 36 अबातुआ रोड रोशपुआ में 58 साल के 58 years old श्री खेमराज चारिटर जो जानों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर नंबर 36 अबातुआ रोड रोशपुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गुजचरण लेन मिडलैंड्स में 74 साल के 74 years old श्री आत्मदेव दुमन जो रांदाबेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनके घर गुजचरण लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसेलमो प्रोविडेंसिया टू प्रोविडेंस कोचिंग मिलिटी में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर पटू जो सतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और सीआईडी मौका में पुलिस सर्जन थे की मृत्यु हो गई है अर्थे आज 9:30 बजे आज सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी तिहा मनुष मीनाक्षी पटू के घर मोसेलमा प्रोविडेंस कोचिंग मिलिटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM मुलजी लेन प्लेनमानियों में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखजन बिसुनी जो जीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और शोफर टैक्सी के नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके बेटे विशाल बिसुनी के घर मुलजी लेन प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM बोगन रोड रिविया जोंपर में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री कृतानंद बोगन जो जुके के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके घर भोगन रोड रिविया जॉन पर उसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM इंग्लैंड में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री राजेंद्र रुचाया जो रॉय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और टैगोर रोड फोजुसा के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज डेढ़ बजे इनकी पत्नी सविता रुचाया के घर इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ईस्ट लंदन इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड प्रोविडेंस कोचिंग मिलिटिया में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वालियमी पालियाची मुनियो पैदाइशी नाम सीना तोम्बी जो मानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज दो बजे इनके पोते मुदाली बेन पाजानी के घर और रोड प्रोविडेंस कोचिंग मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रामचंद रोड रिपाई में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुसमावती रामन जो मावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज नौ बजे इनके घर रामचंद रोड रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9 AM बेनिका लेन नंबर 2 ग्लैन पार्क वाकवा में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुमित्रा बाई बाऊ पैदाइशी नाम लक्सीमो जो मांटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े नौ बजे इनके घर बेनिकालीन नंबर 2 ग्लैन पार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट के पिप में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री जय पोगासस रामसरन जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनकी पत्नी शांति बाई रामसरन के घर लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट के पिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मरोड देवी जो राजेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े दस बजे इनके बेटे कुशल देवी के घर सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM चंद्र लेन लागोजा में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड श्री राम सामी यमानारेडी आपादू जो नारायण के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज एक बजे इनके बेटे दमारेडी आपादू के घर चंद्रलेन लाखोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबेया की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: बल्कि नए एहसास नए सपने और कभी कभी किसी खास की याद दिला देती है। तो आप किसको याद कर रहे थे?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: भाई कोई प्यार में बर्बाद हो जाता है और कोई प्यार में बर्बाद होना चाहता है। सुबह के 7:15 हो गए हैं जी। गुड मॉर्निंग जी। आज है 10 जून और जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको सबसे पहले हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आई होप इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग फॉर यू। भाई प्यार की बात करें तो प्यार जो बिना आवाज के दिल की बात कह देता है, प्यार जो दूर होकर भी पास होने का एहसास दिलाता है, और प्यार जो एक सिंपल गुड मॉर्निंग मैसेज को भी पूरे दिन की स्माइल बना देता है। तो क्यों ना आप भी अगर किसी को प्यार भेजना चाहते हैं, सेंड मी योर मैसेज ऑन 549 and 1294। एक सिंगल गुड मॉर्निंग किसी के लिए भी सिंपल सा, तो ये किसी के चेहरे पे स्माइल ले आ सकता है, किसी के दिन को चेंज कर सकता है, और क्या पता ऐसी गुड मॉर्निंग के साथ उनके चेहरे पे जो स्माइल हो ये पूरा दिन उनके साथ रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो मस्ती। ये है आपका मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ। स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर भी हम आपके कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। भूलिएगा नहीं, आप अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन 549 and 1294 अबाउट हाउ यू फीलिंग अबाउट टुडे। हम तो पहुंच ही गए ना मिड वीक की, और आज वेनसडे है भाई। और वेनसडे में क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई 2 दिन गए, अब बस 2 दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद वीकेंड आ जाएगा। अभी हफ्ता शुरू हुआ ही नहीं, हम वीकेंड की ओर पहुंच ही जाते हैं।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
2: Radio Musti. Musti.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: La vie, c'est ou PCR, sentir. C'est le macot c'est nul shop. Refill ban produit ménager. Révis-nous bien moins. C'est et complice ou péranen grand. C'est vis la nature. Amenou galon. Vinerie Filouban Produits Ménagers Ecclésienne donne nous 4 channel shops. Triolet, Paille, Petite Rivière et Floréal.
4: Économique, écologique, passez au refil, c'est logique.
5: Cernol, le signe de confiance.
6: Béala, Wednesday Baza, log et cote winners. Wednesday Baza, c'est tous les mercredis dans tout ban winners.
7: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes carottes pour 22,95 rupees. Et betterave pour 29,95 rupees. Et fruit gift pack pour 189,95 rupees. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 rupees.
6: Ban prix là, Baza, Maudirou. Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Baza.
8: On est tous winners.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: रेडियो मस्ती पर आपका हम वेलकम करते हैं. यस, मॉर्निंग बीट विदिता के साथ सुबह के 7:20 हो रहे हैं. एंड याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम कि भाई टाइम हो रहा है, घर से निकलना है, गाड़ी में जाना है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ करना होता है मॉर्निंग मॉर्निंग में. हमारी जो लेडीज़ होती है वो भी टाइम के हिसाब से ही चलती हैं भाई. उनको कभी बाद में निकलना होता है या उनको पहले निकलना होता है, तो सारा सब कुछ काम जो होता है वो टाइम पर ही होना चाहिए और सब कुछ फिक्स होता है. चलो इस टाइम के हिसाब से कहीं आपने 5 मिनट डाला है कि 5 मिनट बैठ के आप अपना जो चाय या कॉफ़ी है या अपना सीरियल जो वगैरह है, ब्रेकफास्ट है, वो आप कर लें. 5 मिनट आपकी 24 आवर्स में आपके लिए 5 मिनट्स होता है? नहीं होता है ना. नहीं होता, कभी नहीं होता. ये हमेशा होता है कि इनके पास टाइम होता नहीं है. तो निकाला करो ना वो 5 मिनट अपने लिए, खुद के लिए. सबके लिए टाइम निकालते हो तो खुद के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? क्या आप अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो? इंसान यही भूल करता है कि वो सबको इंपॉर्टेंस देता है, बस अपने आप को भूल जाता है. लेकिन हम आपको नहीं भूले. चलो भाई, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से या तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स में से किसी का बर्थडे है और आप उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, चलो किसी का दिन तो हम स्पेशल बनाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. तो लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा बर्थडे ऑफ द डे. और ये किसको मिलेगा ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि आप अगर कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो उन्हें फ़ोन करके हम सरप्राइज दे सकते हैं. बस नंबर आपको पता होना चाहिए, इट्स 5499124. जल्दी करें, अपने मैसेज भेजिए और जिनका बर्थडे है उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर ज़रूर डालें.
0: मॉर्निंग बीट
1: RM2 Radio Musti in the mix.
3: Candy G. खाली बोतल है वो

0: Zella ho, Bella ho, ya to fir Priya ho. Yes, Sachin ki ur se a very good morning to you and thank you for joining us. Chalo ji, yahan par Anita ji hai, flag se yaad kari hume. Thank you, the next gana for Beti Zia, especially unko bahut sara pyar bheji unki mummy Anjali. Aur yahan par Archana humare saath hain. Good morning to you and saath mein yahan par aur bhi bahut sare log hain. Chali dedications thodi der mein, abhi ke liye samay ho gaya hai. Badhte hain sports ki aur.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News, latest updates.
3: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
0: And yes, sports ke latest khabron ke saath studio mein kaun aa gaye hain? Hamare dost Arvind, chaliye unka swagat karte hain. Good morning, Arvind.
5: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. FIFA World Cup 2026 कल से शुरू होगा. रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी तीनों देशों में. पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच. ये ग्रुप ए का मैच है जिसमें मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक हैं. किक ऑफ कल रात 11 बजे. फिर परसों सुबह 6 बजे साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक और रात 11 बजे ग्रुप बी में कनाडा वर्सेस बोस्निया. ब्राजील का पहला मैच संडे सुबह 2 बजे. फ्रांस का पहला मैच सेनेगल के खिलाफ होगा मंगलवार 11 बजे. अर्जेंटीना की एंट्री होगी वेंसडे सुबह 5 बजे अल्जीरिया के खिलाफ. और इंग्लैंड ग्रुप एल में है पहला मैच बुधवार को. ये मिडनाइट किक ऑफ है. इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कल खेले गए. स्पेन ने पेरू को 3-1 से हराया. चीन और थाईलैंड के बीच मैच ड्रॉ 0-0. इंडोनेशिया 1 मोजाम्बिक 0. कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1 चिली 2. फुटबॉल फेडरेशन ऑफ रशिया 3 ट्रिनिदाद 0. हंगेरी 3 कजाकिस्तान 1. जोबोस्लाई का 1 गोल रहा. आज सुबह सऊदी अरब और सेनेगल के बीच मैच ड्रॉ गया 0-0. अर्जेंटीना ने 3-0 से आइसलैंड को ठंडा किया. बाग का फिर मेसी का गोल पेनाल्टी पर और अलमांडा का 1 गोल रहा. वेनेजुएला ने 2-0 से इराक को जमीन पर उतारा. फिर आज पोर्टुगल, नाइजीरिया, इंग्लैंड खेलेगा क्रोएशिया के खिलाफ. और ट्रांसफर न्यूज की ओर एक नजर डालते हैं. एथलेटिको मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर जुलियान अल्वारेज के लिए रियल मैड्रिड 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है. पर एथलेटिको मैड्रिड ने कहा कि उसका रिलीज क्लोज 430 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग है. 430 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. फुलहम से मार्को सिल्वा अब बेनफिका में जा रहा है. मैनेजर मार्को सिल्वा वहां यूजे मोरिनो का स्थान लेगा. द स्पेशल वन वापस रियल मैड्रिड में आ रहा है. यूजे मोरिनो के साथ एएस रोमा में आर्सेनल का डिफेंडर कलाफ्योरी खेल चुका है. मोरिनो उसे अपने साथ अब रियल मैड्रिड में लाना चाहता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के डिफेंडर लेविस हॉल पर है. और नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाड़ी एलियट एंडरसन के वेज डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड. पर मैनचेस्टर सिटी फ्रंट रनर है उसे साइन करने के लिए. क्रिकेट. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में हराया. इंडिया ए टीम की जीत हुई श्रीलंका ए टीम के खिलाफ. वैभव सूर्यवंशी केवल 14 रन बना पाया. ऋतुराज गायकवाद की सेंचुरी रही. So that's it, the latest from the sports world. भूलिएगा नहीं, कल से फुटबॉल का महामेला शुरू होगा और इस पर जानकारियां आपको समय समय पर देते रहेंगे. I'll catch you at 8:30 for the latest from the World Cup. चलो World Cup की ओर 8:30 को

0: लेंगे। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती। बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट। RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: अजय, हम भी तो अपनी जिंदगी में खुशियां ही बटोरना चाहते हैं और खुशियां बांटना चाहते हैं। हम चले आते हैं एवरी मॉर्निंग आपका साथ देने के लिए आपके अपने रेडियो मस्ती पर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए गीतों के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर नेक्स्ट गाना हमारा जो होगा हमें लेकर जा रहा है किधर भाई? ये हमें लेकर जा रहा है 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर।
1: Morning beat.
2: Oh God! One more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti in the mix.

0: अनी कमतीबा कल आम होलबा CWA के आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरेला, जबकि गलत बरिस के इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% रहलन। मोगवाकवा में हालत काफ़ी गंभीर बाते, ये सबसे बड़ा जलाशय में सिर्फ 45.8% पानी बा। हाई स्थिति के चलत कई कदम पर गौर करेला ताकि पानी के सप्लाई करल जाए सकेला। भारत के तरफ से मुरिस के हासिल 100 इलेक्ट्रिक बस में से 95 बस हमनी के सड़क पर कार्यरत बाते। देश भर में हाई बस 33 लाइनों पर सेवा देवे बाते। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद कहलन के सार्वजनिक परिवहन में ई नवा बस के बदौलत एगो असल पैराडाइम शिफ्ट होलबा। ऊ बोलन के डीजल से चलने वाली बस के बरअक्स इलेक्ट्रिक बस खातिर एगो खास मूल ढांचा के ज़रूरत बाते, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसर इंतजाम अहम बाते। आज से पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के लेके नवा कानून नवा नियम लागू होलबा। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जिन जना फोन के इस्तेमाल करेला वो 5-10 पॉइंट गवालेला। अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहान में क्रेओल मॉरिशिया के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गलबा। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद 12:45 से 2 बजे के बीच मुर्शस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES में जा सकेला। ये प्रक्रिया हुआ जाकर ही पूरा करे सकेला। रजिस्ट्रेशन फी खातिर 526 रुपये और पर्चे खातिर 3,499 रुपये लगेला। विदेश में इसराइल ने दक्षिणी लिबनान में कई जानलेवा हमला करेला, बावजूद कि ईरान ने हमला ना करे के चेतावनी देलन। लिबनानी स्वास्थ्य मंत्री बतैलन कि 8 गो जना के मौत हो कर पाती। तो ये रहा समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका हमारे इस मॉर्निंग बीट के सेकंड आवर में जो आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर. सुबह के 8:08 हुए हैं, आपका वेलकम. और चलिए भाई, कहां तक पहुंचे? गाड़ी चला रहे हैं, पता है अभी टेंशन शुरू हो जाता है जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं. लेकिन टेंशन न देने का, हमारे साथ जुड़े रहने का, स्माइल करने का, खुशियाँ जो हैं वो बिखेरने का. चलिए जी, यहाँ पर राखी जी हमारे साथ है, कहती है मॉर्निंग में जैसे निकलते हैं हम तो घर से निकलते ही फंस जाते हैं. होता है, लेकिन आपको जब इतना पता ही है तो टेंशन क्यों लेना, है ना? जब इंसान को पता ही है कि क्या होने वाला है तो टेंशन क्यों लेना, जो होना है वो तो होके रहेगा. चलो, यहाँ पर जो होगा ये भी जान लेते हैं. अभी सुमेरा से मिलने का समय हो गया है, जानते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स.
4: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह कुछ छींटे पड़ेंगे खासतौर पर पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में. दूसरे इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और दक्षिण तथा ऊंचे इलाकों में बादल घिराएंगे और रह रह कर बारिश होगी. आज रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा. हवा आज सुबह उत्तर की तरफ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा. दक्षिण पूर्व में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है. दिन के दौरान समुद्र की हालत में सुधार आएगा. तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24. साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्यास्त 5:37 पर.
0: योर वेदर फोरकास्ट ऑन RM2
1: रेडियो मस्ती.
5: Béala, Wednesday Bazaar, la gagote winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion bidoune balle. 500 grammes carottes pour 22,95 €. Et betterave pour 29,95 €. Et fruit gift pack pour 189,95 €. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 €.
5: Bonne prix là. Bazaar, Moudirou. Rendez-vous gagote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous winners.
8: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
9: लड़की बड़ी अनजानी है.
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे.
10: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं.
11: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से.
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.

0: Avant tes défis, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: जो जिसके किस्मत में लिखा होता है उसे वो मिलकर ही रहता है। कितनी गहरी बात है ना। हम अक्सर जिंदगी में कुछ चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कभी किसी इंसान के लिए, कभी किसी

0: रिश्ते के लिए कभी किसी सपने के लिए और जब वो चीज़ या वो इंसान हमें नहीं मिलता तो लगता है कि शायद हमारी मेहनत कम थी या हमारी मोहब्बत में कमी थी। लेकिन सच तो ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर इंसान का एक मुकद्दर। कभी कभी ज़िंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहाँ हम जाना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो रास्ता हमें उस जगह तक पहुंचाने के लिए था जो हमारे लिए बनी हुई थी। वैसे मोहब्बत भी कुछ ऐसी होती है, अगर कोई आपकी किस्मत में है तो चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, कितनी भी मोड़ आ जाए, जिंदगी किसी न किसी बहाने से आपको उस इंसान तक ले ही जाता है। और अगर कोई आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाते हैं। कोशिश हमारी जिम्मेदारी है और नतीजा शायद किस्मत की कहानी। आज अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सपने के पूरे होने का, किसी अपने के लौट आने का या किसी नए रिश्ते की ज़िंदगी में आने का, तो बस याद रखिए जो आपके नाम लिखा है वो आपसे दूर रह सकता है, पर वो एक न एक दिन आपके पास आएगा ज़रूर।
1: Avant tout défi, tout long shift, tout premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Au défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Radio Musty. In the mix.
3: Radio Musty. Feels a musty.
2: In the mix.

0: good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti.
2: एंड यस, अगर आप थोड़ा सा उदास फील कर रहे हैं, लाइफ में कुछ हुआ है, तो याद रखिए कि ये भी लाइफ का एक चैप्टर होता है जिससे हम सबको गुजरना होता है. वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और आप वेदिता का साथ दे रहे हैं इन मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर. आपका वेलकम करते हैं. थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं कुछ और डिटेल्स के साथ कंसर्निंग द वर्ल्ड कप, पर अभी के लिए अगले गाने के साथ आगे बढ़ेंगे. प्लीज लेट मी नो कहाँ से सुन रहे हैं, मूड कैसा है ऑन 5499-1294.
1: Radio Musti.
0: Hit music only.
1: Feels a musti. Radio Musti.

0: ready for the biggest World Cup ever.
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
2: Alright, हम तो तैयार हैं। अरविन, are you ready?
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर। कल से फुटबॉल का ग्रैंड फेस्टिवल महामेला का शंखनाद होगा। जी मुआं, कल मेक्सिको सिटी के हिस्टोरिक एस्टाडियो अज़्टेका में ओपनिंग मैच मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीन देशों में ट्रिलोजी ऑफ ओपनिंग सेरेमनीज। मेक्सिको में प्री मैच सेरेमनी में शकीरा और बर्नाबॉय होंगे। इस बार फीफा एडवांस सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, जो रियल टाइम ऑडियो अलर्ट भेजेगा असिस्टेंट रेफरी को, ये जब एक खिलाड़ी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा से ऑफसाइड हो। साथ में AI enabled 3D अवतार बनाए गए हैं। सभी 1248 खिलाड़ियों के 3D अवतार होंगे। फुटबॉल के दो लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के लिए लास्ट डांस आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। इनका रिकॉर्ड है 6 वर्ल्ड कप। सबसे वेटरन खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड का गोलकीपर ग्रेग गोर्डन, जो 43 ईयर ओल्ड हैं। कुछ एडिशनल रूल्स होंगे। 10 सेकंड सब्स्टिट्यूशन रूल, मतलब अगर एक खिलाड़ी 10 सेकंड में मैदान से नहीं निकलता तो आने वाला खिलाड़ी उसे एक मिनट रुकना पड़ेगा। टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। साथ में हाथ या टी शर्ट से माउथ कवरिंग बैन, ये जब ऑफिशियल या ओपोनेंट से कॉन्फ्रंटेशन हो इसके लिए रेड कार्ड दिया जा सकता है। और थ्रो इन्स और गोल किक के लिए नो टाइम वेस्टिंग, केवल 5 सेकंड रिस्टार्ट, ये एक काउंटडाउन के रूप में होगा। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ESPN पावर रैंकिंग्स के अनुसार स्पेन फेवरेट बन गया है, उसके बाद फ्रांस और अर्जेंटीना। जो भी कहें, फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, कुछ भी हो सकता है ये वर्ल्ड कप। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें एक सरप्राइज पैकेज होगा। कौन है वो सरप्राइज पैकेज, ये तो 14 जुलाई को ही पता चलेगा। फिलहाल बता दें कि चलो वर्ल्ड कप की ओर का ये लास्ट एपिसोड था, क्योंकि कल तो पहुंच जाएंगे मेक्सिको। सो विल बी हैविंग सेम टाइम 8:30 वर्ल्ड कप मैगजीन, हमारा साथ जरूर दीजिएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम एंड गेट रेडी, वर्ल्ड कप कल से शुरू।
0: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: आइए जानते हैं MBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
0: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, Radio Musti और अभी जो है World Cup.
3: हाँ, हो रहा है. लेकिन मैंने सुबह सुन लिया.
2: बस.
4: Happy birthday to you.
2: हाँ, ठीक है, ठीक है.
3: अच्छा, अच्छा हाँ, वैसे 8:44, मौसम बहुत कमाल का है. ओहो.
2: Awesome है.
3: और ट्रैफिक, जैसे तुमने भी ट्रैफिक ब्रांच से बात कर ली, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं है?
2: कुछ नहीं है. सबने कहा कि भाई जहाँ पर यूजुअल ब्लॉक होता है रास्ता, वो यू कांट यू नो अवॉइड इट. जब वो है तो है, अब है तो क्या करें.
3: अब है तो है.
2: क्या हो गया हमको? चलो कोई बात नहीं. यहाँ पर कभी कभी होता है कि हमें शब्द जो है मिलते नहीं है. अब मौसम है, लेकिन ये आराम से पहुंच गया आज.
3: हाँ, आराम से पहुंच गया. अब ये जो अभी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये होने वाला है इंटरनेट पर. ओह माय गॉड, इतने सारे मैचेस और आप देखने के लिए बिल्कुल बेताब है. ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको पता लगे क्या कि MBC प्ले 1.0 उसको डाउनलोड करके आपको उसके अंदर साइन इन करना है. और उसके बाद जब आप पेमेंट पे जाएंगे, यानी कि न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी चैनल पर, वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, ले जाएगा आपको एक ऐसी जगह जहां आपको पेमेंट करनी है. यानी कि अगर आप बैंक एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी कि MCB जूस है, ब्लिंक है, पॉप है, इनमें से, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड.
2: लेकिन गड़बड़ हो रही थी क्योंकि वो वेट नहीं करते.
3: हाँ, यानी कि आपको जो नोटिफिकेशन आ रही है उसको ओके तो करो.
2: हाँ,
3: और उसके बाद आगे बढ़ो.
2: तो ओके नहीं किया, ऐसे फोन बंद कर दिया, तो
3: वो प्रोसेस नहीं होगी,
2: पेमेंट नहीं होगी. तो आपको वेट करना पड़ेगा. जब तक आप उसको ओके नहीं करोगे तो ओके नहीं होगा.
3: राइट, एग्जैक्टली. तो बस होने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा वो वापस MBC होम पेज पर, और उसके बाद आपके मैचेस शुरू. हम भी शुरू, मैं भी शुरू, 9 से 12.
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
6: Hits music only.
5: Feels amazing.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए दोस्तों, चलते चलते यहाँ पर कुछ दोस्त हैं हमारे जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर

रहे हैं उनको भी हम हैप्पी बर्थडे बोल ही देते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ वैसे अर्चना जी हैं, अर्चना आपकी सिस्टर शर्मिला का बर्थडे है और यहाँ पर एक मैसेज आया है। कविता कहती है कि मैं अपने ग्रीन हाउस में हूँ, म्यूजिक हाई वॉल्यूम पे चल रहा है, मूड एकदम टकाटक हो गया है। थैंक यू सो मच कविता जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी तो हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी, यहाँ अंजलि अपनी बेटी जिया के लिए नेक्स्ट गाना मांग रही है, वहीं पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे आपने कहा कि बर्थडे जो है वो 19th को है, तो आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार आप भेजना चाहते हैं जरूर, लेकिन बर्थडे के दिन अगर आप मैसेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड एक रिक्वेस्ट है, जब कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मेक श्योर कि जिस दिन बर्थडे है उसी दिन आप लोग हमें मैसेज भेजें, वरना जिनका आज बर्थडे होता है उनका क्या होता है कि उनका नंबर निकल जाता है। वैसे भी यहाँ पर कृतिका रुकोया, उनके लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में, गानों गानों में पता नहीं वक्त कैसे निकल गया, हमारे जाने का भी टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के साथ आपके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी हम लेकर आए और आपको बस कहीं ना कहीं हैप्पी फील हुआ होगा। तो याद रखिए, जिंदगी हर रोज़ हमें एक नया मौका देती है, कल की फिक्र और गुजरे लम्हों का बोझ लेकर मत चलिएगा, हर सुबह हमारे लिए कुछ नया लेकर आती है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ और जबरदस्त हो। इसी के साथ विकास आ रहे हैं थोड़ी देर में आपका साथ देने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में 7 बजे।

0: 9 बज चुके हैं।
1: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है सुमेरा। नमस्ते सुमेरा।
2: नमस्कार रादाब। हमारे जलाशयों में जल स्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कलामहुवी CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। मोहवाकुआ में हालत काफी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45

0: 8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनजर कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए बोहोल्स, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क्याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू के मुताबिक अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, मुख्तलिफ साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से मुर्शस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की ज़रूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम बहुत ही अहम है। इस संदर्भ में लातू के निक में नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं और कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहां एक दौरा भी किया। आपको ये भी बताते चलें कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट लगते थे। बुजुर्ग और बेवा महिलाओं को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी के संदर्भ में नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच अभी तक जारी है। पिछले 4 जून को हेमराज मनोहर और 5 जून को रमेश हेमराज की गिरफ्तारी के बाद एफसीसी ने फेसबुक पर कल एक पोस्ट में सूचित किया कि 12 शक्की शिकार लोगों की सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और फिलहाल करीब 40 लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है। फिर भी एफसीसी मांग करता है कि जिस किसी के पास इस मामले में मालूमात है वो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को इतला कर सकता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अब नए होर्मुज पर एक नए अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए हैं और उधर इसराइल ने जनूबी लेबनान में कई जानलेवा हमले किए। बावजूद ये कि ईरान ने हमला ना करने की चेतावनी पहले से दी थी, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Okay, so आज का 8 मिनट एंड इट्स 10th of June. आज मौसम बिल्कुल फिट एंड फाइन. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मॉरिशस. गुड मॉर्निंग, यानी उठने का टाइम है, भागने का दौड़ने का टाइम है. मुस्कुराई और वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि अगले एक घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे तक बॉलीवुड का फुल ऑन तड़का, मस्ती का धमाका और म्यूजिक का जादू होगा आपके साथ. भाई, चाय की पहली सिप या ऑफिस की आपने ले ली हो ट्रिप, हम बनाएंगे आपके इस दिन को सुपर हिट. मैं विकास आपके साथ और ये है मस्त मॉर्निंग शो. हेलो, गुड मॉर्निंग. तो बस आपको बताया कि यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ और बातें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या बॉलीवुड से रिलेटेड हो, सब कुछ लेकर आए, क्योंकि मूड बनाना आपका खास. हमेशा खुश रहो, ना कि उदास.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: हर किसी अपनी अपनी कहानी. सुबह की भागा दौड़ी अलग, जिंदगी के साथ बातचीत अलग.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: आइए जानते हैं MBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: नहीं ऐसे बोलना किसी को कि तू मेरा गरम मसाला, इसी बात है ना। वैसे सोचिए कि आप फ्रिज में भी गरम मसाला को रखें तो ठंडा नहीं, वो गरम ही रहता है। गरम मसाला।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: जैसे आप देखते हैं सितारों की चालू शुरुआत करते हुए निवेश और संपत्ति के मामले में आज भाग्य आपके साथ है। विदेश यात्रा या वीजा मिलने के आज शुभ संकेत हैं। और आपको करियर की बात करें तो बातचीत, लेखन या प्रेजेंटेशन से जुड़े जो लोग हैं उनका आज दिन बेहतरीन होने वाला है। संपत्ति या घर से जुड़े निवेश के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज का दिन कुछ समय से चली आ रही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से आज छुटकारा मिलेगा, यानी कि अच्छा महसूस करेंगे। नए आय के स्रोत खुलेंगे और सरकारी कामकाज में भी आ रही अड़चनें दूर होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े अटके काम या फाइलें आज आगे बढ़ेंगी। और फाइनेंस की बात करें तो पारिवारिक धन के मामले में आज स्पष्टता और सुधार आएगा, क्लियर हो जाएंगे करना क्या है।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आपकी बुद्धि और वाणी में अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ और परिवार में शुभ समाचार के योग हैं। महत्वपूर्ण बैठक, लेखन या किसी भी तरह की प्रस्तुति के लिए दिन काफी अच्छा है। सीनियर्स के सहयोग से व्यवसायिक यात्रा भविष्य के लिए फलदायी साबित हो सकती है।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: व्यक्तित्व में चार्म होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, चुंबक की तरह आप काम करेंगे, किसी बड़े काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा दिन है। वैसे कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करेगी और जीवन साथी की सलाह से कोई ना कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।
2: लियो सिंह राशि,
0: लियो जो भी काम हो उसको समय रहते कर दियो। वैसे भाग्य का तो साथ मिल ही रहा है, लेकिन जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले हैं वो भी सुलझेंगे। करियर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कामकाज की सराहना होगी। अधिकारियों और सीनियर लोगों से मुलाकात आज बेहद फलदायी साबित हो सकती है और संपत्ति से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन काफी लाभ लेकर आ सकता है।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: करियर में बुद्धि और कौशल की बदौलत आज आप एक अपनी नई पहचान बना पाएंगे। आर्थिक लाभ के कई रास्ते खुलने वाले और प्रेम संबंध विवाह की दिशा में बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन या कोई और आप काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, तो धन अच्छा है और व्यापार को बढ़ाने के लिए नेटवर्क आपका बढ़ता जाएगा।

0: अचानक किसी से मदद मिल सकती है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: कार्यस्थल पर खुशखबरी मिलने से आपका जोश बुलंद रहेगा। ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों की बात आज बन सकती है। वैसे कार्यालय में स्टाफ या कर्मचारियों की कमी की समस्या आज आसानी से दूर होगी। भाग्य के सहयोग से नए प्रस्ताव मिलेंगे जो भविष्य को आपके संवारेंगे।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: भाग्य और साथ और पुराने अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय है। वही होटल या फिर शिक्षा या बैंकिंग से जुड़े कार्य में बड़ी सफलता मिल सकती है। रिसर्च एनालिसिस और बौद्धिक कार्यों से आज आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है और आपके जो लक्ष्य हैं वो सामने हैं। बस अपने हौसले बुलंद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए क्रिएटिविटी के साथ।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज लग रहा है कि अपनों का साथ रहने वाला है। परिवार के बीच कुछ समय बिताने से मन काफ़ी खुश होगा, प्रसन्न होगा। विरोधियों पर आज आपकी स्वाभाविक बढ़त बनी रहेगी। किसी पार्टनर या क्लाइंट के साथ बातचीत बेहद स्पष्ट और फलदायी साबित हो सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: बिजनेस पार्टनरशिप और विवाह के मामले के लिए समय काफ़ी शुभ है। व्यापार में आधुनिक तरीके अपनाने से आज आपको एक बढ़त मिलेगी, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। व्यापार को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का ये बिल्कुल सही समय है और कंपटीशन के बावजूद आपकी लॉजिकल क्षमता आपको सबसे आगे रखेगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपको कर्ज, बीमारी और दुश्मनों पर एक साथ विजय प्राप्त होगी। वेरी गुड, कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले में सफलता मिलने से आपके हौसले बुलंद होंगे। कार्यस्थल की अड़चनों को आप अपने धैर्य और संतुलन से आसानी से दूर कर लेंगे। किसी नई डील, बातचीत या प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं तो उसमें भी दिन अच्छा निकलने वाला है।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: क्रिएटिव काम करते हैं और ऐसे ही कुछ फील्ड में जुड़े हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। संतान और प्रेम के क्षेत्र में शुभ संकेत हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से आज आपको कोई नई ऊर्जा मिल सकती है, जैसे लगेगा कि रुकना मना है। क्रिएटिव और बौद्धिक क्षेत्र के लोगों के लिए दिन विशेष फलदायी है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी सफलता मिल सकती है।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti,

0: Welcome to RM2.
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: आजकल तो बिना फोन या इंटरनेट के या फिर बिना स्क्रीन के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, अब अगर प्रोफेशन की बात करें तो कहीं भी जाते हैं, अपनी मेल्स हो या फिर किसी से बात करनी हो, ये सिलसिला तो है ही है। लेकिन आपको बताने कि रोड पर अगर आप जा रहे हैं तो फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, इफ़ यू ड्राइविंग। और वहीं पर अगर हम बच्चों की बात करें तो कितना आसान हो जाता ना कभी कभी माँ बाप के लिए कि बस बच्चे को एक फ़ोन पकड़ा दिया या टैबलेट पकड़ा दिया और कहा कि बेटा देख लो, ब्राउज कर लो, और हम थोड़ी देर के लिए आराम से बैठते हैं और बच्चा भी शांत है। लेकिन बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें बच्चे फ़ोन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। हालांकि इस समस्या पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और कहा कि इसके पीछे एक्चुअली पेरेंट्स का ही हाथ होता है। और अब करें तो क्या करें, आखिर बच्चे के हाथ में मोबाइल होना ही क्यों चाहिए। वहीं ऐसी कौन सी चीज़ सीख रहे हैं जिसके आसपास आप हमेशा फोकस करते रहते हैं कि फ़ोन देख लो, सीखें क्या? अगर कुछ है ऐसा ऐप तो फिर ठीक है, नहीं तो बैठकर उनसे बात करें, ज़िंदगी के बारे में बताएं, वैल्यूज़ के बारे में बताएं, अपने संस्कार के बारे में बताएं, पूजा प्रार्थना इसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ाएं, ज़रूरी है। कहते हैं बस मैं आधे घंटे के लिए वीडियो देखना चाहता हूँ, बस हो जाएगा, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। नहीं, हाँ करें तो क्या करें, माँ बाप को भी अपना वक्त चाहिए। और बच्चे अगर उनको अगर आप डिसिप्लिन नहीं सिखाते तो ये कुछ मिनट की बातें बहुत घंटे की हो सकती हैं। बच्चा भी अपने आप को शेर मानता है, उम्मीद रखता है कि एक बार मिल गया तो फिर उसके बाद माँ बाप अपने में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद ठीक है कहानी चलती रहेगी। हो जाता है जिसकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो 5499-1294 मुझे बताइए कि आपकी साइड पर भी कुछ ऐसी मुश्किलें परेशानियां आती हैं, तो मिलकर ढूंढते हैं सोल्यूशन।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Right, the music continues. और कितनी कमाल की बात है ना, किसी ने कहा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, अंदर क्या है पता नहीं. चलिए हम बात करते हैं ऐसे इंसिडेंट की जो वायरल हो रहा है ऑन द नेट. ज्वेलरी खरीदना अब नॉर्मल बात नहीं रही, अच्छी खासी रकम के साथ ही खरीदारी हो पाती है, मगर क्या सिर्फ इसलिए? कोई आम आदमी अगर पहुंचे और आम से कपड़े पहनकर पहुंचे तो कई लोग अपना जजमेंटल स्टाइल शुरू कर देते हैं कि कहां पर इसके पास ना पैसा हो गया कि यहां पर आ गई. भाई एक पोस्ट अभी आजकल काफ़ी वायरल हो रही है जहाँ पर कहते हैं कि पूरा मार्केट घूमने के बाद थके हुए एक ऐसे स्टोर में पहुँचे जहाँ पर अच्छी खासी एक वैरायटी थी, लेकिन किसी को देखा, कहते हैं कि इतने नॉर्मल लुकिंग लोग क्या खरीद पाएंगे. और फाइनली जब उन्होंने खरीदारी की तो 1 लाख से ऊपर, और फिर हर कोई ये सोचने लगा कि एक्चुअली हमें जज नहीं करना चाहिए. कितनी बार होता है कि आप किसी को देखकर बस जज कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है, लेकिन नहीं, टिल द टाइम आप खुद उसे इंटरेक्ट ना करें, उसके बारे में ना जाने, तब तक अपना ओपिनियन निकालना ये ठीक नहीं है. अब हम भी कितनी जिंदगी सिचुएशन में ऐसे कर बैठते हैं, नहीं, इसे ज़रूरी है कि अपना ओपिनियन अपने पास रखें. हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने कुछ सुन लिया है, सतर्क रहें, आँखें खोल कर, कान खोल कर बिल्कुल रेडी रहें, लेकिन एकदम से अपना ओपिनियन बना लेना किसी की बात पर बस एहसास करके, विश्वास करके बस वही सोच लेना, ये भी ठीक नहीं होगा. क्या कहते हैं?
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: गायत्री जी हमारे साथ दे रही है और उन्होंने कहा कि गान उनको बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे कुछ गाने लेकर मैं ऑल सेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में बढ़ने वाले 10 बजे के समाचारों की ओर।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
0: कैची म्यूजिक और मौसम जो इतना ऑसम, तो

0: to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Well, good morning, Dime Jake. It's 10 a.m. सुमेर आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
6: नमस्कार. आदाब. भारत की तरफ से मुर्शिद को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं. देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं. परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है. उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की जरूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम अहम हैं. इस संदर्भ में के निगम नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं. कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहां एक दौरा भी किया और इसके दौरान सेशल की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोर्ट भी मौजूद रहीं. उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के सिलसिले में मुर्शिद में हुई तरक्की का उल्लेख किया और पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अमल की भी सराहना की. ये जाने कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है. रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग

0: फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकते हैं जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स काटे जाते थे। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट कल हुई आमहुवी सीडब्ल्यूए की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। मोहवाकवा में हालत काफ़ी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनज़र कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए भूमिगत जलाशय मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क्याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल है। प्रशिक हीरो मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। रविवार को महाराष्ट्र भवन मोका में नई प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। संकल्प दल से प्रशिक हीरो को 146 वोट मिले जबकि चक्र दल से पूर्व अध्यक्ष बलराज नाहू को 125 मत मिले हैं। और विदेश में इसराइल ने दक्षिणी लबनान में कई जानलेवा हमले किए हैं बावजूद ये कि ईरान ने पहले हमला न करने की चेतावनी दी थी। लबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। अवेन्यू कालीमा 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती भागवंती बिसुन, श्रीमती भागवंती बिसुन पैदाइशी नाम सुबनुत जो इंदिरा मैडम क्वीमोंजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर अवेन्यू कालीमाई कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

चलिए ऐसे उड़ते उड़ते हवा में हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सेकेंड आवर मस्ट मॉर्निंग शो, और अभी जैसा मौसम हो रहा है उसमें गाने बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग इन, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा और साथ में म्यूजिक चलता हुआ।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti.
2: जब बात करते हैं ट्रॉपिकल आइलैंड की, तो उसका गोल्डन रूल है ब्रीदेबल फैब्रिक्स, यानी कॉटन लिनन आउटफिट्स आपको फ्रेश रखेंगे और पूरे दिन कंफर्टेबल फील कराएंगे।

0: लेकिन हाँ जब ठंड हो रही है तो एक डेनिम जैकेट ये काफी स्टाइलिश हो सकती है, राइट। कभी कभी स्टाइल कपड़ों से नहीं एक्सेसरी से बनता है। एक क्लासी वॉच या फिर सिंपल ब्रेसलेट या फिर एक स्टाइलिश कैप आपके लुक को इंस्टेंटली अपग्रेड कर सकती है और आज अपने आउटफिट में एक अनएक्सपेक्टेड कलर ऐड कर सकते हैं। स्कार्स क्यों नहीं, मस्टर्ड, टर्कोइज या कोरल, थोड़ा सा कलर और पूरा दिन हीरो हीरोइन वाला कॉन्फिडेंस।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड

0: का ऑप्शन चुनते हैं। सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: चलिए यहाँ पर बॉलीवुड की बात होती है वहीं पर time to get into the World Cup.
1: Get ready for the biggest World Cup ever.
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
0: भैया एक्साइटमेंट बिल्डिंग ऑन और बहुत सारे लोग अपने टीवी सेट्स के बहुत करीब आने वाले हैं. शोर और साथ में बहुत सारी मस्ती होगी अपने फैंस के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ. लेकिन जहां पर मैचेस की बात होती है एमबीसी टीवी पर तो आएंगे ही आएंगे. लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं सारे के सारे मैचेस, देन डोंट फॉरगेट एमबीसी प्ले 1.0 पर जाकर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब और उसके बाद आपको सारे मैचेस मिलेंगे. चलिए जहां पर हम मैचेस की बात करें वहीं पर आपको बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए नोरा फतेही का नया गाना सिर सिर रिलीज हो गया है. ये ट्रैक फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल म्यूजिक प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में माना जा रहा है. अब इस ट्रैक के लिए दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो काफी उत्साहित हो चुके हैं. 18 घंटे में इसको 6.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोरा फतेही बहुत खुश. उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग मेरे लिए बहुत ही खास है. उन्होंने बताया कि ये ट्रैक की कल्पना अलग अलग कल्चर के मिले जुले स्वरूप के तौर पर की गई थी और उसका उद्देश्य ग्लोबल होने के साथ साथ अपनी खासियत को भी बरकरार रखना था. नोरा, यू वेंट आउट विदाउट एनी छोरा. कोई बात नहीं, फिर भी असर तो पैदा हो ही रहा है. उन्होंने कहा कि चाहती हूँ ये ट्रैक उनकी पहचान के हर पहलू को एक साथ लेकर आए जिसमें मोरक्को और कनाडा की जड़ें शामिल हो. क्या बात है. इस गाने के बिहाइंड द सीन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन ने इसे और भी मीनिंगफुल बना दिया है. चलिए जहाँ पर म्यूजिक कमाल कर रहा है वहीं पर नॉट टू फॉरगेट ये मैचेस, ये एक्साइटमेंट सब कुछ आप फॉलो कर पाएंगे एमबीसी टीवी, एमबीसी रेडियो, एमबीसी प्ले पर.
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई. Catch all the news, views, previews, and latest updates

0: FM2
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज रिकासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्रिसोक

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ठीक गानों के बीच में यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी और कितने लगाना स्पेशली टू हेमा जी उनका बर्थडे है सो बहुत सारा प्यार एंड ऑल टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये दिनेश की तरफ से कहते हैं उनका हर दिन बहुत ही स्पेशल हो एंड बॉय एंड गर्ल फैमिली एंड सभी परिवार की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार एंजॉय योरसेल्फ हैव अ स्पेशल डे आज का दिन यानी कि वेंसडे नमस्ते जी सब ठीक ठाक यहाँ सब कुछ ठीक है थैंक यू और कहते हैं हेलो मेरा नाम है विश्वानी ऑलराइट विश्वानी जी थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंजॉय द सॉन्ग और स्पेशली उनको गाना पसंद आया जो अभी चला था तेरा रास्ता छोड़ू ना चेन्नई एक्सप्रेस मजा आता जब हमने देखा एक और मूवी को और रिलाइज किया कि जो कल्चर्स है ना ये जब साथ में आते हैं तो कुछ खटपट जरूर दिखाई गई बॉलीवुड के अंदर लेकिन कितना ब्यूटीफुल है ना दो कल्चर्स के साथ में आना एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया और उसके बाद ये सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी निभाया था एंड द मूवी टर्न आउट टू बी वेरी वेरी नाइस थैंक यू और यहाँ पर अर्चना जी आपका भी स्वागत फ्लैग्स हमारे साथ दे रहे हैं और कहते हैं एंजॉइंग द म्यूजिक और हैव अ गुड डे आपको भी एंड जितने भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं अब उनको एक बार फिर से याद दिला दें कि MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए और MBC के साथ साथ जुड़ जाइए इस वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के साथ जहाँ पर कुछ आपको मैचेस मिलेंगे MBC TV पर वहीं पर अगर सारे मैचेस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट MBC प्ले 1.0 मजे लो
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती

0: गाना खत्म। और ये बताना चाहते हैं हम कि हमारा जो दूसरा घंटा है वो भी समाप्त हो रहा है, थोड़ी देर में चलने वाले सीधा समाचार की ओर, उसके बाद एक बार फिर से 11 टू 12 शुरू करते हैं मस्त मॉर्निंग शो।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती,
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4,
2: सेंटर
3: 99.4।
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: Time check exactly 11 a.m. Studio में आगे सुमेरा लेकर संक्षिप्त समाचार, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार रादा। भारत की तरफ से मॉरिशस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स काटे जाते थे। मेट्रो में अनुचित हरकतों और मेट्रो लाइन पर इलेक्ट्रिक सामग्रियों की चोरी से मुतालिक बढ़ती तादाद के सिलसिले में मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड कदम उठाने का दावा करती हैं। सवारियों की हिफाजत के लिए अपराधियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मेट्रो एक्सप्रेस ने इलेक्ट्रिक सामग्रियों को हाथ लगाने के खतरों के बारे में भी याद दिलाया। इसके चलते अब सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहानात में कयोल मुगिसिया की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद 12:45 से 2 बजे के बीच मुर्शस एग्जामिनेशन सिंडिकेट जा सकते हैं। ये प्रक्रिया वहां जाकर पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फी के लिए ₹526 और पर्चे के लिए ₹3,499 लगेंगे। जो उम्मीदवार इसी पर्चे के लिए जिस ओ लेवल के लिए पंजीकृत हो चुके हैं उन्हें कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। बालिगों को अपने साथ अपना आईडी कार्ड और ओरिजिनल जन्म पत्र लाना चाहिए, जबकि नाबालिगों को अपना जन्म पत्र और स्कूल का एडमिशन कार्ड तथा हालिया खींची 2 तस्वीरें लानी चाहिए, जिन पर एक नामवर व्यक्ति के दस्तखत होना चाहिए। और विदेश में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी का एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 9 लोग जख्मी हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
5: Your news

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: कभी जिंदगी भागा दौड़ी में ऐसा लगता है कि इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, एंड फाइनली किसके लिए? लोग समझ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? Just fly with the music. और अपने आप को एक बार फिर से रिफ्रेश होने दो, पूछो मत.
4: क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्त

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नहीं, हमेशा बात करते और कुछ टाइम पहले वो कह रहे थे कि स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना नहीं अच्छी बात है कि आप अप टू डेट रहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हम सब के हाथ में स्मार्टफोन है। एक क्लिक पर दुनिया भर की खबर, एंटरटेनमेंट और दोस्तों से कनेक्शन मिल जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, जब फैमिली डिनर पर सब अपने फ़ोन में बिजी होते हैं या जब फ्रेंड्स मिलकर भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो क्या हम वाकई कनेक्टेड हैं? रिसर्च ये कहती है कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन फेस टू फेस कन्वर्सेशन

0: क्वालिटी टाइम
1: वो भी तो इतने इंपॉर्टेंट है।
0: तो आपका क्या मानना है, क्या टेक्नोलॉजी ने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया है या हम वर्चुअल दुनिया में इतने खो गए कि रियल कॉन्वर्सेशंस कम हो गई, क्या है? तो आज के शो में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अपने ओपिनियंस, अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करें। बताएं कि आपके साइड पर अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो आपने क्या ढूंढा है सोल्यूशन। जाना जाएगा पूरा नेशन।
2: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स।

0: पहली बार
1: नहीं एक्चुअली दूसरी बार
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.
1: देखिए साहब ऐसा है कि हमने यहाँ पर अब एक बात रखी थी कि टेक्नोलॉजी हाथ में हाथ लेकर चल रही है और हर चीज़ में एक्चुअली स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स कंप्यूटर्स और दुनिया भर के गैजेट्स लेकिन फिर आप

0: जब बैठते भी खाने के लिए तो वो मी टाइम नहीं होता, फैमिली टाइम नहीं होता, हर कोई अपने फ़ोन में बिजी है, या फिर कहीं आप बाहर जाते हैं तो हर कोई अपना फ़ोन चेक कर रहा है, या फिर रोड पर चलते हुए देख रहे हैं तो फ़ोन सर नीचे है और चलते चले जा रहे हैं। या फिर निशा है, उन्होंने कहा कि हमने तो बस ये कोशिश की कि बच्चों के साथ बैठ कर हर एक एप्लीकेशन में जाएँ, उनको दिखाएँ कि इसमें है क्या। अगर आप चाहते हैं बच्चे एक्सप्लोर करें वो एप्लीकेशन, तो आप भी उसमें जाकर देखिए और आप जो बताएंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पर एक बस टाइम वेस्ट वाली बात हो रही है और कहाँ पर वीडियोस रील्स देखते देखते कितने घंटे निकल गए। अरे अगर वो वीडियो रील्स बनाकर आपको दिखाकर व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास इतना खाली टाइम है क्या? बस देखे जा रहे हैं और आसपास जो है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये सोचना। निशा, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। और वहीं पर कहते हैं हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अभी 11:30। ज्योति शाल तो बनारस से, और कितने लगाना प्लीज़ आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मदर फैमिली के लिए एंड ऑल्सो फॉर द टीम, थैंक यू जी। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें शामिल हों इस टॉक के अंदर, इस कॉन्वर्सेशन में, तो ज़रूर 5499-1294 पर कहते हैं प्लीज़ एक गाना हमारे लिए ऐड कर दीजिए। और तयाग से हैं, कहते हैं एनी रोमांटिक सॉन्ग, अनुषा के लिए मोहतबा में हैं, उनके लिए अगर गाना हो जाए तो। चलिए अभी गाना कुछ अलग ही स्टाइल का, लेकिन ये आपके लिए करेंगे हम डेडिकेट ज़रूर।
1: You're listening to Masti Mornings.
2: Masti Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to Radio Masti.

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: Oh my god, oh my god, oh my god! Devine qui est de retour chez McDonald's!
3: Hé, hey, calme-toi un peu! On connaît qui chez McDonald's?
2: Le Spicy Panier Burger! Tu te rappelles comment il était spicy?
3: Ah, oui, je me rappelle! J'en pleure encore!
2: Mais là, il est revenu, mais en édition limitée et avec une nouvelle sauce tandoori 100% végétarien! Faut qu'on aille goûter maintenant!
3: Le Spicy Panier Burger est de retour chez McDonald's avec un twist qui va vous surprendre à tester avant qu'il ne disparaisse! McDonald's, pa-da-pa-pa-pa! I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: होता नहीं कि अपने देश से दूर हो और फिर ये जो एनर्जी है, ये जो टच है म्यूजिक का, वो मिस करने लगते हैं. और वो मिस करने के बाद वापस आ गई याद प्रीति को, back in Mauritius and enjoying every single bit. Welcome back, Preeti.

भाई अगर मौसम कुछ ऐसा है कि गाने फटाफट उनका साथ देने के लिए निकल पड़े, और अभी थोड़ी देर में मैं भी चल रहा हूँ क्योंकि आने वाली है निर्मणि आपका साथ देने के लिए इन रेट्रो रिदम। जिंदगी में प्यार न कम होने पाए, जिंदगी का कोई गम आपको छूने ना पाए, कभी लगे अकेलापन तो म्यूजिक के पास बिना सोचे समझे बस चले आए 24/7 आपके साथ।

0: जीवी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार। रादाब, हिरन का शिकार करने का सीजन पहली जून से शुरू हुआ है और सितंबर में खत्म होगा। इसके जरिए बड़ी आमदनी प्राप्त करने की उम्मीद है और इस साल 600 टन मांस का अनुमान है जो प्रति किलो 350 रुपए में बेचे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहानों में क्रियोल मोरिशियन की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद पौने 1 बजे से 2 बजे के बीच मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट जा सकते हैं। ये प्रक्रिया वहां जाकर पूरी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फी के लिए 526 रुपए और पर्चे के लिए 3499 रुपए लगेंगे। जो उम्मीदवार इस पर्चे के लिए GCEO लेवल के लिए पंजीकृत हो चुके हैं उन्हें कोई फीस भरनी नहीं पड़ेगी। बालिगों को अपने साथ अपना आईडी कार्ड और ओरिजिनल जन्म पत्र लाना चाहिए, जबकि नाबालिगों को अपना जन्म पत्र और स्कूल का एडमिशन कार्ड तथा हालिया खींची दो तस्वीरें साथ लानी चाहिए, जिन पर एक नामवर व्यक्ति के दस्तखत होना चाहिए। प्रशिक हेरू मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। रविवार को महाराष्ट्र भवन मोका में नई प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। संकल्पा दल से प्रशिक हेरू को 146 वोट मिले हैं, जबकि चक्र दल से पूर्व अध्यक्ष बलराज नारू को 125। नए अध्यक्ष ने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र भवन के दूसरे चरण के निर्माण पर जोर देंगी। विदेश में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी का एक दर्दनाक हादसा पेश आया। कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग जख्मी बताए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कालीमाई काथोबोन में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती भगवंती बेसुन, श्रीमती भगवंती बेसुन पैदाइशी नाम सुबनुत जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर एवेन्यू कालीमाई काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। इंग्लैंड में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवी एरामा आपादू पैदाइशी नाम शेनिगाडू जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 2 बजे उठाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो एट 2 PM। रॉयल रोड पंचवती रिविया जोंपा में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्रीराज जिबोसिया जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी पत्नी सरोदा जिबोसिया के घर रॉयल रोड पंचवती रिविया जोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट दिलास्को की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: रेट्रो रिदम,
1: RM2

0: Retro Rhythm.
1: और दोस्तों धीरे धीरे से मैं भी आ गई हूँ वापस आपकी जिंदगी में लेकर रेट्रो रिदम, जहाँ चलाने वाले हैं आपके लिए 80s एंड 90s के वो गाने जो आज भी दिल को सुकून देते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ निर्मली और अगले दो घंटों तक मिलकर खोलेंगे यादों का वो पिटारा जहाँ कैसेट का जमाना था, गाने दिल से लिखे जाते थे और मोहब्बत सुरों में महसूस होती थी। तो लंच ब्रेक हो या वीक डेज की मस्ती, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दीजिए और रेट्रो रिदम के साथ चलिए एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर पर आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजू

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti
2: 12:18 हुए हैं और आप कनेक्टेड हो आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ बदनमनी रेट्रो रिदम का सफर ऑन हो चुका है। अगर आपके पास है कोई डेडिकेशंस मैसेजेस हिचकिचाइएगा मत 5499124 पर लेट्स गो।

0: Retro Rhythm.
1: हाय, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता कि आपके पास भी यही समस्या है। अगर हाँ, टेंशन नॉट जी, अगर शब्दों से डायरेक्टली बयां नहीं हो पा रही है तो मैसेजेस के जरिए ही कर दो, या फिर रेडियो पर मैसेजेस भेज दीजिए 5499-1294 पर, हम पढ़ के सुना देंगे उनको स्पेशल गाने के साथ। एंड हमारे साथ अभी कनेक्टेड है जना जी फ्लैग से, विश्वानी जी भी है, वी हैव वीना जी, बिग हेलो टू यू। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ रही है और भी अमेजिंग गाने लेकर आ रहे हैं आपके यार जो रेडियो मस्ती पर। स्टे ट्यून्ड,
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: और दोस्तों अभी बात करते हैं बॉलीवुड के उस एक्टर की जिनकी कॉमेडी, डांस और टाइमिंग का आज भी कोई जवाब नहीं है। एंड आई एम श्योर आपने गैस कर लिया होगा ना कि उस एक्टर का नाम क्या है। हां जी, इट्स गोविंदा। एंड आप जानते हो 90s में गोविंदा इतने बिजी थे कि एक वक्त पर उनके पास 40 से ज़्यादा फिल्म्स असाइंड हो चुकी थी। उनकी एनर्जेटिक डांस स्टाइल और कॉमिक एक्सप्रेशंस ने उन्हें हर घर का फेवरेट बना दिया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट्स की बारिश हो रही थी एंड उन्हीं सुपरहिट फिल्मों में से एक थी हीरो नंबर वन, एक ऐसी मूवी जिससे आज भी लोग उसके मज़ेदार सीन्स और ज़बरदस्त गानों के लिए याद करते हैं। तो चलिए रेट्रो रिदम पर सुनते हैं हीरो नंबर वन का ही एक सुपरहिट गीत और फिर मिलते हैं इसी म्यूजिकल सफर में।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: retro rhythm.
1: गानों में कितने रहस्य छुपे होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड थोड़ी बोलते हैं, हर सवाल का जवाब होता है टाइमलेस सॉन्ग्स में। अगर डिप्रेस्ड हो पुराने गाने सुनो, कुछ सही नहीं हो रहा है फिर से पुराने गाने सुनो, वाइब बन जाती है वही। तो यही पर आपके सभी सॉल्यूशंस है, बस रेडियो को हाई वॉल्यूम पर एनएस डाइव राइट बैक उन्हीं खूबसूरत लम्हों में म्यूजिक के साथ। मिलेंगे बाद में सीधा संक्षिप्त समाचार के लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: दिन के एक बज रहे हैं चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
4: नमस्कार एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का देश में पानी की कमी को देखते हुए जल्द ही पानी वितरण पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं सबसे पहले प्रीमियम क्षेत्र प्रभावित होगा जो मौवाक्वा जलाशय से पानी प्राप्त करता है इस जलाशय में पानी का स्तर घटकर 45.8% रह गया है करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है अगर आने वाले महीनों में अच्छी बारिश हुई है तो देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है अतिरिक्त भूजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मोबाइल इकाइयों के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है खेती के लिए पानी के इस्तेमाल पर भी कुछ सीमाएं लगाई जा सकती है साथ ही पानी बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा सिंथेटिक ड्रग से जुड़े एक मामले में जांच आगे बढ़ रही है बिजनेसमैन स्टीवन मुटुकोपेन के कथित नेटवर्क से जुड़े आदसू के एक पूर्व अधिकारी को अदालत में पेश किया गया कुविलेन पिले मोदी पर आरोप है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स देश में लाने में मदद की पिछले साल उन्हें FCC ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था आज मोका की अदालत में उनके खिलाफ साजिश का अस्थाई आरोप दर्ज किया गया इस बीच FCC कथित ठगी गिरोह की जांच जारी रखते हुए जो वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को निशाना बनाता था कदमों को आगे बढ़ा रहा है अब तक 12 संभावित पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं जांच में पता चला है कि उनके बैंक खातों में 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई थी आरोप है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा जुए में खर्च किया गया करीब 40 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है FCC का मानना है कि जांच के दौरान और पीड़ित सामने आ सकती है और विदेश स्तर की खबरों में उत्तरी आयरलैंड की राजधानी में बीती रात हिंसा और आगजनी की कई घटनाएं पेश आई घरों और गाड़ियों और एक बस को आग लगा दी गई सैकड़ों नकाबपोश लोग सड़कों पर उतर आए और विदेशियों के खिलाफ नारे लगाए ये तनाव सोमवार को हुए एक चाकूबाजी हमले के बाद शुरू हुआ इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर इंग्लैंड में 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवी इरामा अपादू की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम शेनिगादू लोग उन्हें देवी के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी गुरुवार को इंग्लैंड में 2 बजे उठाई जाएगी रॉयल रोड पंचवती रिविया जुगांपा में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की राज जिबोसिया की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें सुरेश के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी गुरुवार सुबह के 10:30 बजे उनकी पत्नी सरोदा तिबोसिया के मकान खीविया जुगांपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट लास्को की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM एवेन्यू कुसियाला पाल्मा कैट्रोबोन में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्री

0: राम जेतु का राम की मृत्यु हो गई है, श्री राम जेतु का राम की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें कृष्णा के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले सीएनटी में बस कंट्रोलर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान का ट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: सब वापस आ गई है नमनी बैक टू योर रेट्रो रिदम का सिलसिला, जहां पर 80s एंड 90s के गानों पर वाइब करेंगे। साथ में मूड चाहे आपका जैसा भी हो, आरएमजे रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए। एक चुटके में तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर बेहतर जरूर हो सकता है। आप बस ट्यून इन रहिए, तो देर ना करते हुए वापस चलते हैं उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने के लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: रास्ता का तो पता नहीं, लेकिन अभी रेट्रो की बात हो रही है तो टार्जन को कैसे भूल सकती है। 90s के बच्चों के लिए टार्जन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, एक पूरी एडवेंचर दुनिया थी। जंगल की वो पुकार, पेड़ों से झूलते हुए टार्जन और उसकी कहानियों ने सब की इमेजिनेशन को एक अलग ही उड़ान दी थी। एंड बॉलीवुड में भी टार्जन का जादू चला, चाहे फिल्मों में हो या गानों में। टार्जन का नाम आते ही बचपन की यादें ना यूं ताज़ा हो जाती है। तो चलिए अभी सुनते हैं एक और नॉस्टैल्जिक ट्रैक सिर्फ आपके ही रेट्रो रिदम पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: आइए जानते हैं NBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: दोस्तों गाने तो हम चुन चुन कर ला रहे हैं आपके लिए, लेकिन शो की असली जान आप हैं और आपके मैसेजेस। हर मैसेज के साथ जुड़ी होती है एक कहानी, एक याद और कभी कभी किसी खास इंसान के लिए एक प्यारा सा डेडिकेशन। तो चलिए देखते हैं रेट्रो रिदम की महफिल में आज कौन कौन जुड़ा है एंड किस गाने ने उनके दिल को छू लिया है। वे आप ज्योति जी शातू बिनागर से नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं आशनी सुरेखा माधव फैमिली के लिए। वो ऑल्सो हैव ललिता जी जो कनेक्टेड है। हेलो ब्यूटीफुल, कैसे हो आप? पेरिस से वी हैव देव जी, गाना तुझे देखा तुझे चाहा मांग रहे हैं, डेडिकेटेड टू हिज प्यारी वाइफ। वाओ कितने लकी हो आप वाइफी जी। एंड ऑल्सो कनेक्टेड है हमारे साथ हमारे बड़ी यालेश सोहिनाम से। एंड वी हैव प्रकाशवती जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लॉन्ग टाइम के बाद आपने मैसेज भेजा है, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड। तो नेक्स्ट गाना सभी के नाम डेडिकेटेड करते हैं। कीप स्माइलिंग एज and keep vibing to RM2 Radio Masti.
2: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: और दोस्तों इसी गाने के साथ रेट्रो रिदम का आज का ही सफर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि 80s और 90s के इन हसीन गीतों ने आपके दिन को थोड़ा और खास बना दिया होगा। मैं नलमणि आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सी यू सून एंड ऐसे ही स्टे कनेक्टेड विद यू RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं। श्री सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे आस्था नमस्कार
6: नमस्कार 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का देश में पानी की कमी को देखते हुए जल्द ही पानी वितरण पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं सबसे पहले पेनमिलियम क्षेत्र प्रभावित होगा जो मऊ व क्वा जलाशय से पानी प्राप्त करता है इस जलाशय में पानी का स्तर घटकर 45.8% रह गया है करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है अगर आने वाले महीनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है अतिरिक्त भूजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मोबाइल इकाइयों के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी सिंथेटिक ड्रग से जुड़े एक मामले में जांच आगे बढ़ रही है बिजनेसमैन स्टीवन मुतुकोपेन के कथित नेटवर्क से जुड़े आजसू के एक पूर्व कर्मचारी अधिकारी को अदालत में पेश किया गया कुविलेन पिले मर्दी पर आरोप है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स देश में लाने में मदद की पिछले साल उन्हें FCC ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था मोका की अदालत में आज उसके खिलाफ साजिश का अस्थायी आरोप दर्ज किया गया है इस बीच FCC कथित ठगी गिरोह की जांच जारी रखे हुए हैं जो वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को निशाना बनाता था अब तक 12 संभावित पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं जांच में पता चला है कि उनके बैंक खातों में 30 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए गए थे आरोप है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा जुए में खर्च किया गया करीब 40 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है FCC का मानना है कि जांच के दौरान पीड़ित सामने आ सकती है अतिरिक्त पीड़ित सामने आ सकती है मॉरिशस में हिरण शिकार का मौसम शुरू हो गया है ये 17 जून से 30 सितंबर तक चलेगा इस साल बाजार में करीब 600 टन हिरण का मांस आने की उम्मीद है इसकी कीमत लगभग 350 रुपये प्रति किलो रहने का अनुमान है लेकिन शिकार के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे वैध परमिट लेना ज़रूरी होगा हथियारों की जांच पुलिस करेगी और केवल मंजूर कारतूसों को ही इस्तेमाल किया जाने दिया जाएगा इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना और बाजार की ज़रूरत को पूरा करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में बीती रात हिंसा और आगजनी की कई घटनाएँ पेश आई घरों और गाड़ियों और एक बस को आग लगा दी गई सैकड़ों नकाबपोश लोग सड़कों पर उतर आए और विदेशियों के खिलाफ नारे लगाए ये तनाव सोमवार को हुए एक चाकूबाजी हमले के बाद शुरू हुआ मामले में 30 वर्षीय एक सूडानी शरणार्थी को गिरफ्तार किया गया है जिसे अदालत में पेश किया जाना है स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार हिंसा के दौरान अश्वेत परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया इन घटनाओं की कड़ी निंदा की जा रही है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
7: Bombay Talkies, Radio Masti.
4: Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Well, friends, with this beautiful, soulful song, आपका हम स्वागत करते हैं on the waves of RM2 Radio Masti. इधर बजकर 10 मिनट. I do hope आज का Wednesday आपके लिए एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त है. Because आप तो है हमारे superstars जो हर एक दिन को खास बना ही देते हैं. तो चलिए दोस्तों, आपका हम warm welcome कर रहे हैं on the waves of Radio Masti. मैं हूँ परी आपके साथ. And yeah, well, it's time for your Bombay Talkies. जानते हैं आप, 2 से लेकर 4 बजे तक लेकर आते हैं आपके लिए हम बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स भी होते हैं आपके लिए. सो रीमेक्स, रीमिक्सेस एंड मैशअप्स होने वाला है बहुत कुछ आपके नाम. सो स्टे कनेक्टेड, साथ दे रहे हैं आप तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:33 हो गए हैं वेनसडे आफ्टरनून, यानी कि मिड वीक तक हम पहुंच गए हैं। मंडे ट्यूसडे ऑलरेडी गुड बाय बोल दिया है हमने, और वेनसडे जब आता है तो लगता है कि बस 2 days मोर टू गो, उसके बाद तो आ ही रहा है वीकेंड। और जब वीकेंड आता है तो ऑफकोर्स मूवीज भी रिलीज होती है, और जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे का दिन होता है बॉलीवुड के लिए वेरी खास एंड स्पेशल। सो हम आपको बता दें कि जो जुलाई का महीना होने वाला है वो बॉलीवुड के लिए काफी खास होने वाला है। आलिया भट्ट से लेकर अजय देवगन तक कुछ बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो नॉट टू फॉरगेट, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप मुझ तक यानी कि परी तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर। मैं कर रही हूं आपका इंतजार, एंड फ्रॉम द फिल्म डंकी वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना, गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह।
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a musty.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.
2: Bombay Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
3: सो वेल फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे थे दैट जुलाई का महीना ये हमारे जो सिनेमा लवर्स यानी कि मूवी लवर्स हैं इनके लिए एकदम एंटरटेनमेंट से भरा रहने वाला है। दरअसल सिनेमाघरों में अलग अलग जॉनर की कई बॉलीवुड फिल्में दस्तक देने वाली है। इनमें आलिया भट्ट की मच अवेटेड अल्फा से लेकर अजय देवगन की धमाल 4 तक शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं जुलाई 2026 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों की पूरी लिस्ट कौन सी है। तो पहले बात करते हैं अल्फा के बारे में। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा वो साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और YRF स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म अपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है और ये फिल्म जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली है। इसका जो टीजर है ये 10 जून को रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं जो अहम किरदार निभाएंगे। सो आपको बता दें ये फिल्म 10th ऑफ जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और वहीं अजय देवगन की मच अवेटेड धमाल 4 की रिलीज डेट भी आ गई है। खुद अजय ने इसकी रिलीज डेट को कंफर्म किया है और उन्होंने पोस्ट में बताया था कि ये जो कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है ये भी 10th ऑफ जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी कि टक्कर होने वाली है अल्फा और धमाल 4 के बीच। और इसी बीच एक और फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है और वो है द इंडिया स्टोरी। आपको बता दिए दैट ये जो फिल्म है एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है द इंडिया स्टोरी, जिसमें श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है सागर बी शिंदे ने और ये एक काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। सो कुछ डिफरेंट फिल्में यानी कि 3 डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में हम देखने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखना ये होगा कि कौन सी फिल्म को ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन अभी के लिए आपका प्यार हमें मिल रहा है राइट ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रहे हैं। बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ऐसे ही साथ देते रहिए, मैं हूं परी आपके साथ। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294
4: RM2
0: Radio Musty feels a musty.

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: On to Radio Musti.
0: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik. Gel Air.

0: Freshener. Freshness. Anytime, anywhere.
1: North. South.
2: 103.5.
1: East. West.
2: 96.4.
1: Center.
2: 99.4.
3: RM2.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
3: Feel the Musti.
4: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। देश में पानी की कमी को देखते हुए जल्द ही पानी वितरण पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सबसे पहले पेनविलियम्स क्षेत्र प्रभावित होगा जो मऊ वाकवा जलाशय से पानी प्राप्त करता है। इस जलाशय में पानी का स्तर घटकर 45.8% रह गया है और करीब 1.5 लाख ग्राहकों को रोजाना 4 घंटे तक पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर आने वाले महीनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। अतिरिक्त भूजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मोबाइल इकाइयों के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एफसीसी की जांच में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अजसू के पूर्व अधिकारी कोविलेन संगाहन पीले मर्डी को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। 37 वर्षीय इस पूर्व पुलिसकर्मी पर आरोप है कि वो करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स मॉरिशस लाने की कथित साजिश में शामिल था। इस ड्रग्स की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है और गौरतलब है कि उसे पिछले वर्ष भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एफसीसी ने अदालत में उसकी जमानत पर विरोध जताया है। मॉरिशस में हिरण शिकार का मौसम शुरू, ये सत्र 1 जून से 30 सितंबर तक चलने वाला है। इस साल बाजार में करीब 600 टन हिरण का मांस आने की उम्मीद, इसकी कीमत लगभग 350 रुपए किलो रहने का अनुमान है। लेकिन शिकार के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे, वैध परमिट लेना जरूरी होगा। हथियारों की जांच पुलिस करेगी और केवल मंजूर कारतूसों को ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना और बाजार की जरूरत को पूरा करना है। विदेश स्तर की खबरों में अमेरिका ने कहा है कि एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद ईरानी के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमरीकी सेना के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस के पास रेडर केंद्रों, निगरानी केंद्रों और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। बहरीन, जोर्डन और कुवैत ने भी सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पुष्टि की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद जवाब देना जरूरी था। वहीं ईरान ने कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब देगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कॉलिव्यू कुली में 71 साल की 71 years old की श्रीमती धनवंती मोगन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:30 AM। रॉयल रोड क्लूनी में 65 साल के 65 years old के श्री केसरी दसोई की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनके भाई विजय दसोई के मकान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:04 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
6: Bombay Talkies,
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.

ऑन RM2 रेडियो मस्ती. आई डू होप यू एंजॉयिंग योर वेडनेसडे आफ्टरनून. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके नाम. सो दिस इज अ स्पेशल वन डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए. एंजॉय दिस वन.

0: Oldies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, 3:18 हो गए हैं. That was a beautiful song from the film Border 2. Daljee Dosanjh और उनका साथ देते हुए Sachet and Parampara Tandon. अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों. So आपके messages, आपके dedications, आपका प्यार on 5499-1294. So यहाँ पर जीना जोईसरी हमारा साथ दे रही हैं. आप warm welcome आपका सात समुंदर पार से connected हैं आप radio मस्ती के साथ. So thank you so much for the love. अगला गाना होगा आपके नाम एंड कहते हैं please wish my mom Preeti Itwaru very हैप्पी बर्थडे. लमाई वाकवा से हैं और आज अपना 69th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उनके लिए स्पेशल विशेस ये है फ्रॉम रिया रॉन रॉबिन एंड टिंकी और कहते हैं मम वी लव यू. दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. सो आपकी मामा के लिए बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेस ऑन हर स्पेशल डे. हैप्पी वाला बर्थडे आपको प्रीति जी. साथ ही यहाँ पर कहते हैं प्लीज एक रोमांटिक गाना हो जाए फॉर माय फ्रेंड प्रिया हु इज श्योरली लिसनिंग टू रेडियो मस्ती नाउ एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सचिन. वाजी वाह क्या बात है. दिल से दिल मिल रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती और ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है भाई. प्यार बांटने से बढ़ता है और अभी के लिए तो यहाँ पर दिल का कनेक्शन बन रहा है एंड इट्स रियली स्वीट. सो गाना होगा स्पेशली फॉर प्रिया एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम सचिन. अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आप दोनों के नाम. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ दोस्त. अमर है साथ में है अविनाश रक्षा त्याशा एंड आरव हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आप एंड एंजॉयिंग रेडियो मस्ती कहते हैं आई लव रेडियो मस्ती. दैट्स रियली स्वीट. वी लव यू. सो बस ऐसे ही प्यार हम तक पहुंचाते रहिए. योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर.
1: RM2
0: रेडियो मस्ती
1: फील द मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Techies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों, 3:37 हो गए हैं और बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा, जो पिछले लंबे समय से लाइमलाइट से दूर है। उन्होंने 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो में देखा गया था। अब यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा बॉलीवुड में दमदार कमबैक करने जा रहे हैं। उदय चोपड़ा ने आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शर्वरी वाघ जैसे सितारों से सजी फिल्म अल्फा से फिल्मी दुनिया में वापसी की तैयारी कर ली है। हाल ही में YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली। हालांकि बेहतरीन विजुअल्स और रोमांचक दृश्यों के अलावा क्रेडिट्स ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्रेडिट से पता चला कि अल्फा की कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है और इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, टैलेंट तो जीन्स में होता है, क्या ये उदय के पर्दे के पीछे की वापसी है? वहीं एक ने लिखा कि इतने सालों बाद उदय चोपड़ा का नाम और देखकर काफी अच्छा लगा। किसी और ने लिखा कि उन्होंने पिछली बार प्यार इम्पॉसिबल लिखी थी और एक मजाकिया अंदाज में लिखा कि धूम यूनिवर्स से इंस्पेक्टर अली का कैमियो आने वाला है। सो यहाँ पर एज अ राइटर अपना कमबैक कर रहे हैं दैट्स उदय चोपड़ा, यश चोपड़ा के बेटे, जो साल 2000 में मोहब्बतें फिल्म से जिन्होंने अपना बॉलीवुड का सफर शुरू किया। उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में अगर आपको अपनी किस्मत चमकानी है तो सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आती है वो है आपकी किस्मत। यानी कि अगर किस्मत का साथ नहीं है तो फिर कितना भी आपको बैकिंग क्यों ना मिल जाए, कितने भी आप किसी फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन जब अगर किस्मत का साथ नहीं है तो फिर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यही हुआ उदय चोपड़ा के साथ, जहां पर एक्टिंग तो अच्छी खासी करते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो जादू चलना चाहिए था लोगों के दिलों पर वो नहीं छाया। अब एज अ राइटर देखते हैं क्या कमाल दिखाने वाले हैं। प्यार इम्पॉसिबल लिखी थी उन्होंने, जिसमें उनके साथ नजर आई थी प्रियंका चोपड़ा, और अब देखना ये होगा कि अब इस फिल्म अल्फा से क्या वो एज अ राइटर अपना कमबैक कर पाएंगे।

So well friends, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है हंसनी लेकर your rush hour. थोड़ी ही देर में जाते जाते यहाँ पर बिना जगह सर साथ दे रही हैं. Bellevue Mall से कहते हैं गाना सभी परिवार, सभी दोस्तों के नाम and for MBC team as well. Thank you जी. कुमार देवचन enjoying time घर पर और साथ में dedicating गाना for पापा श्याम देवचन. उनके लिए भेजा है बहुत सारा प्यार और happy birthday to Miss Rumi. Best wishes from all colleagues, teachers. सभी की ओर से प्यार and special wishes on your special day. जाना जी साथ दे रही हैं आप all the way from Flak. डेडिकेटिंग गाना सभी शिव सरन परिवार के नाम. सो थैंक यू सो मच. परी साइनिंग ऑफ. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check exactly 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, शाम 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। एफसीसी की जांच में एक बड़ा और नया घटनाक्रम। आजसू के पूर्व अधिकारी कोविलेन संगा एनपी लेमर्डे को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। 37 वर्षीय इस पूर्व पुलिस कर्मचारी पर आरोप है कि वो करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स मॉरिशस लाने की कथित साजिश में शामिल था। इस ड्रग्स की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि उसे पिछले वर्ष भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। एफसीसी ने अदालत में इसकी जमानत का विरोध किया है। इसी बीच एफसीसी एक कथित ठगी गिरोह की जांच जारी रखे हुए हैं, जो वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को निशाना बनाता था। अब तक 12 संभावित पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच में पता चला है कि उनके बैंक खातों में 30 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए गए थे। आरोप है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा जुए में खर्च किया गया। करीब 40 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एफसीसी का मानना है कि जांच के दौरान और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। मॉरिशस में हिरण शिकार का मौसम शुरू, ये 17 पहली जून से 30 सितंबर तक चलेगा। इस साल बाजार में करीब 600 टन हिरण का मांस आने की उम्मीद है और इसकी कीमत लगभग 350 रुपए प्रति किलो रहने का अनुमान है। लेकिन शिकार के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे, वैध परमिट लेना जरूरी होगा। हथियारों की जांच पुलिस करेगी और केवल मंजूर कारतूसों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना और बाजार की जरूरत को पूरा करना है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के पास एक अनौपचारिक बस्ती में हुए सामूहिक गोलीकांड में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हथियारों से लैस करीब 10 हमलावर मंगलवार रात इलाके में घुसे और कई जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर फरार हो गए। इस हमले में 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है, जबकि हमले के कारणों की जांच जारी है। शुरुआती आशंका है कि ये घटना इलाके में सक्रिय अवैध खनन गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी हो सकती है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
5: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
2: And well, 4:08, थोड़ी ही देर में हंसनी विल बी ज्वाइनिंग इन. आप दे रहे हैं हमारा साथ राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती वेडनेसडे आफ्टरनून. इट्स टाइम फॉर योर अवतार वाइब्स. काम की भागदौड़ के बाद अब घर पहुंचने की भागदौड़, लेकिन आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे. वी हैव गुड म्यूजिक आपके लिए राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

सो एक और ट्रैक आपके नाम कनेक्टेड है, आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ ट्रैफिक टाइम, लेकिन आपके ट्रैफिक टाइम को बना रहे हैं म्यूजिक टाइम राइट हियर हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर. सो एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ, कीप एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: RM2 Radio Musti.
1: So this one goes out for everyone जो फंसे हुए हैं ट्रैफिक में. Not to worry, हम हैं ना आपके साथ. Good music आपके लिए and हंसनी बस आपको join करने वाली है उनके good music के साथ. साथ ही साथ हमारे जितने भी listeners हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आराम से drive करें, destination पर safely पहुँचे. नकाश अजीज, we have this गाना आपके नाम. Enjoy this one.

0: 4:31 PM. Thank you for joining in on a Radio Masti. Special thank you to you, Parish, who was here for the musical show. और अभी के लिए, आज के लिए हंसनी आ गई है to be with you for आज का रफ्तार vibes. A big hello to everyone. I wish you all a great afternoon. And जितने भी हमारे दोस्त इस समय जा रहे हैं वापस घर, सुबह से इतना सारा काम हो रहा है ना, so अभी no tension, अभी stress को दूर भगाएंगे with our music. And बिल्कुल जहां पर traffic कुछ बढ़ सी गई है, we wish you a safe drive. Please maintain patience. आराम से, इत्मीनान से आप जरूर गाड़ी को चलाएं. And do have a safe journey back. लेकिन यहां पर थोड़ी सी मस्ती तो बनती है ना. बिल्कुल, आप तो जुड़े हुए हो with the radio. मस्ती तो थोड़ी सी और मस्ती हो जाए. So looking for a perfect gift idea? आपने सोचा है कुछ? mysticworld.mu. Discover our exclusive gift cards, gold and silver jewelry, authentic crystals and stunning home decor. अगर इनमें से आप किसी चीज को ढूंढ रहे थे तो बिल्कुल सही मौका है. Grab it on Radio Masti. mysticworld.mu has exactly what you are looking for. जो भी आपको ढूंढना था वहीं पर आप यही पर आपको मिलने वाला है. सो डू जॉइन अस फॉर दिस फैबुलस चांस जो रेडियो मस्ती आपको दे रहा है. विजिट द वेबसाइट टुडे या फिर आप कॉल कर सकते हैं ऑन 5880762. तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट आइडिया है, ये जो गिफ्ट वाउचर है, बिल्कुल आप ही का हो सकता है. ट्राई योर चांस, क्या पता आज आपकी जीत हो जाए ऑन रेडियो मस्ती. बहुत ही इजी क्वेश्चन हम रखेंगे क्योंकि सुबह से इतना सारा स्ट्रेस हो रहा था ना, काम रिलेटेड या फिर ट्रैफिक रिलेटेड. लेकिन अभी दिमाग को सरद घुमाएंगे तो नहीं, बल्कि सिंपल रखेंगे. जो अगला गाना हमने पसंद किया है आप लोगों के लिए, राइट, बस सिंपल सी बात है, आपको सुनना है और पता लगाना है मूवी का क्या नाम. रियली इजी दैट विल बी. और सही जवाबों के लिए यहाँ पर हंसनी का इंतजार रहने वाला है. आपके फुल नेम और एड्रेस, ये सब डिटेल्स प्लीज आप लिखें ऑन 5499-1294, राइट. सो जल्दी से हम गाना को चलाएंगे और गाने को सुनकर आपको पता लगाना है मूवी का नाम.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स.
2: Radio Masti.

0: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर था एक बहुत ही दिलचस्प सा क्वेश्चन. जो गाना अभी बिल्कुल मदमस्त वाला था, किस मूवी से लिया गया था? दैट वाज एक्चुअली योर क्वेश्चन. और बिल्कुल ढेर सारे सही जवाब मिले हैं. इसके लिए धन्यवाद इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए. और यहाँ पे तो हो गया है रेडियो मस्ती पर लकी ड्रॉ. लेकिन सबसे पहले मैं अनाउंस करूँ सही जवाब कौन सा है. इट्स एयरलिफ्ट मूवी, जहाँ पर नजर आए थे अक्षय कुमार. एंड एयरलिफ्ट जो बिल्कुल सही जवाब है. और लकी डो द्वारा जो नाम आया है एक्चुअली कहाँ की रहने वाली है, लेट मी चेक. ओके, लालमाची की रहने वाली है और नाम है उनका दिशा बहादुर. मैंने मैंने कंग्रेचुलेशंस टू यू दिशा, आपकी जीत हो गई है. यस, अगर आप ढूंढ रही थी एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया तो यहाँ पर आपको मिल गया है mysticworld.mu द्वारा, जहाँ पर एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा. पा लिया है आपने एक वाउचर, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर. mysticworld.mu बिल्कुल उनके पास वही है जो आपको चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हो. सो विजिट द वेबसाइट टुडे या फिर यू कैन कॉल ऑन 5880762. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू दिशा. एंड आपका जो गिफ्ट वाउचर है वो पोस्ट द्वारा आपको मिलेगा. सो जल्दी से आप भेजिए अपनी फुल एड्रेस अगर आपने भेज लिया है. सो दैट विल बी नोटेड. वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती.
1: सजन मैनू लुट लै गया है.
2: Radio Musti.
3: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports Live Reporters on RM2. Live.
5: Radio Masti, aapke kareeb.
0: बिल्कुल सही टाइम हो गया है टू गेट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. और यहाँ पर बिल्कुल रेडी तैयार हमारे साथ अरविंद. चलिए उनका वार्म वेलकम. विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद.
6: गुड आफ्टरनून आपको. वैसे ही आपने सुना रेडियो मस्ती आपके करीब. अब वर्ल्ड कप आने वाला है.

0: तो और करीब आएंगे ही, और आपको ही पता है कि एमबीसी आपके करीब है, आपके पॉकेट में भी है आज द न्यू ऐप जो आप डाउनलोड करके फुटबॉल मैच देख सकते हैं, आपको जानकारियां दी जा रही है हाउ यू कैन गो इन इट, सभी मैच 104 मैच आप देख पाएंगे आफ्टर पेमेंट, तो इन सब पर डिटेल्स आपको समय समय पर देते रहेंगे, या फिर यू कैन कम टू एमबीसी, यहां पर आपको ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे ये सब। चलिए तो अभी के लिए विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रेंडलीज, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच जो आज सुबह खेले गए सऊदी अरब और सेनेगल के बीच 0-0। अर्जेंटीना की टीम डिफेंडिंग चैंपियन इन फुल फॉर्म, 3-0 से वो जीत पाया आइसलैंड के खिलाफ, और वेनेजुएला ने इराक को हराया 2-0 से। आज दो मैच इंपॉर्टेंट वंस, पोर्टुगल नाइजीरिया और इंग्लैंड का मैच है कोस्टारिका के खिलाफ वर्ल्ड कप में जाने से पहले, ये इंग्लैंड के लिए एक आखिरी तैयारी मैच है जिसमें टोमास टुखेल को अपनी फर्स्ट टीम को मौका दिया जा सकता है। बट आर्सेनल के खिलाड़ी अभी हाल ही में आए हैं, शायद उनको टीम में भी नहीं रखा जाएगा। इंटरनेशनल वीमेन फ्रेंडीज में भी आज ब्राजील को हराया यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इस मैच में बहुत रेड कार्ड दिए गए। फिर कोस्टारिका को हराया कनाडा ने 6-0 से, और कल थर्सडे, कल क्या है हंसिनी?
1: कल तो सबसे बड़ा दिन जिससे बेसब्री से इंतजार था,
0: हर चार साल में आता है एक बार, और इस बार धमाल करके आया है, क्योंकि वी आर हैविंग सो मेनी मैचेस, सो मेनी टीम्स, और द बिगेस्ट फीफा वर्ल्ड कप जो कल शुरू होगा, इस पर अभी थोड़ी देर बाद आपको डिटेल्स देंगे। वैसे फुटबॉल पंडित प्रेडिक्शंस देने लगे हैं, और आप भी हु विल विन द वर्ल्ड कप, अभी कुछ ज़्यादातर लोग फ्रांस की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग स्पेन, और इंग्लैंड के चांसेस भी हैं इसमें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई अंडरडॉग आ सकता है इसमें। डेफिनेटली इंग्लैंड के जो फुटबॉल पंडित हैं, दे आर गोइंग फॉर इंग्लैंड, इस बार नहीं तो कभी नहीं। हाँ, इस मैच के बारे में बात कर रहे थे, अबाउट द ब्राज़ील यूनाइटेड स्टेट्स वाला मैच, इस मैच में कितने 8 येलो कार्ड दिए गए, कैन यू इमेजिन, रेड कार्ड, तो टीम पूरी इट्स वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो, लेट्स होप फॉर दैट। और खिलाड़ियों के बारे में अभी मूवमेंट सांचो को लेकर कैसे एक नाइटमेयर बन गया, और इस पर बातें हो रही हैं, खासतौर पर जब ऑन लोन खिलाड़ी जो हैं उनको कहाँ भेजा जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, एक दो खिलाड़ी जो ऑन लोन गए हैं उनको लाए जाएंगे या नहीं। साथ साथ में एलियट को लेकर भी, वो एस्टन विला में गया था लेकिन अब एस्टन विला में उसके लिए जगह नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो वापस लिवरपूल में आ जाएगा। इधर क्रिकेट चेक द लेटेस्ट, इसमें इंडिया ए की टीम कल जीत हुई, अभी आज इंडिया वीमेन का मुकाबला इंग्लैंड वीमेन से, अभी इंडियन टीम बैटिंग ऑन 98 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, इंग्लैंड के 171 रन के पीछा करते हुए 37 बॉल्स 73 रन्स फॉर द इंडियन टीम। राइट, सो गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप, बहुत कुछ होगा यहां पर भी रेडियो पर, समय समय पर आपको बहुत कुछ देंगे, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Radio Musti.
4: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.
5: Get ready for the biggest World Cup ever!
6: 2026 FIFA World Cup.
5: Pehli baar hongi 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada aur Mexico.
6: Radio Masti ke saath
5: World Cup Magazine.
0: चलो वर्ल्ड कप की ओर। कल से फुटबॉल का ग्रैंड फेस्टिवल महामेला का

0: शंखनाद होगा G-1 कल मेक्सिको सिटी के हिस्टोरिक एस्टाडियो अस्तेका में ओपनिंग मैच मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन देशों में ट्रिलोजी ऑफ ओपनिंग सेरेमनीज मेक्सिको में प्री मैच सेरेमनी में शकीरा और बर्नाबोय होंगे इस बार फीफा एडवांस सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा जो रियल टाइम ऑडियो अलर्ट भेजेगा असिस्टेंट रेफरी को ये जब एक खिलाड़ी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा से ऑफसाइड हो साथ में AI enabled 3D अवतार बनाए गए हैं सभी 1248 खिलाड़ियों के 3D अवतार होंगे फुटबॉल के दो लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के लिए लास्ट डांस आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है इनका रिकॉर्ड है 6 वर्ल्ड कप सबसे वेटरन खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड का गोलकीपर ग्रेग गोर्डन जिसका जो 43 ईयर ओल्ड है कुछ एडिशनल रूल्स होंगे 10 सेकंड सब्स्टिट्यूशन रूल मतलब अगर एक खिलाड़ी 10 सेकंड में मैदान से नहीं निकलता तो आने वाला खिलाड़ी उसे एक मिनट रुकना पड़ेगा टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा साथ में हाथ या टी शर्ट से माउथ कवरिंग बैन ये जब ऑफिशियल या ओपोनेंट से कॉन्फ्रंटेशन हो इसके लिए रेड कार्ड दिया जा सकता है और थ्रो इन्स और गोल किक के लिए नो टाइम वेस्टिंग केवल 5 सेकंड रिस्टार्ट ये एक काउंटडाउन के रूप में होगा और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ESPN पावर रैंकिंग्स के अनुसार स्पेन फेवरेट बन गया है उसके बाद फ्रांस और अर्जेंटीना जो भी कहें फुटबॉल मैदान में खेला जाता है कुछ भी हो सकता है ये वर्ल्ड कप बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें एक सरप्राइज पैकेज होगा कौन है वो सरप्राइज पैकेज ये तो 14 जुलाई को ही पता चलेगा फिलहाल बता दें कि चलो वर्ल्ड कप की ओर का ये लास्ट एपिसोड था क्योंकि कल तो पहुंच जाएंगे मेक्सिको सो विल बी हैविंग सेम टाइम 8:30 वर्ल्ड कप मैगजीन हमारा साथ जरूर दीजिएगा हैव अ वंडरफुल टाइम एंड गेट रेडी वर्ल्ड कप कल से शुरू
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: listening to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: And yes, we have got music for everyone. यहाँ पर साथ निभाते रहिए on Radio Masti. We are just connecting you with the best of music for आज का रफ्तार vibes. हम सनी का साथ यहाँ पर है and welcoming you. अगर अभी आपने अपना radio set on कर लिया है, वैसे सफर को जारी हम रखेंगे after the news जो होने वाला है sharp at 5 p.m.

0: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर हंसनी आज आपके साथ है. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून. इट्स मिड वीक, वेडनेसडे वाला ये दिन जो आया है. really hope कि सब ठीक है. वी आर हियर टू सेलिब्रेट योर डे 10 जून 2026. एंड वैसे ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक न्यूज द लेटेस्ट ऑन रेडियो मस्ती. अगर इस समय आप सेंटर में हो इन पोर्टवेस और निकल कर आप बढ़ेंगे टू फॉर अबाउट रिश्ते एंड बढ़ेंगे अब चल रेजवी, तो वहाँ पर एक स्लो ड्राइविंग मेंटेन है. ट्रैफिक तो जा रही है लेकिन रुक रुक कर जा रही है. सो यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस. धैर्य जो है आप मेंटेन रखें एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग. और फिनिक्स से होकर आप हाईलैंड्स तक जाएंगे तो वहाँ पर भी इट्स लाइक अ स्लो ड्राइविंग इज गोइंग ऑन. और इसके बाद दैट विल बी लाइक नॉर्मल ड्राइविंग. और आप पोर्टवे से निकल कर राउंड अबाउट कृष्ण की तरफ बढ़ेंगे यानी कि नॉर्थ रीजन्स में जाने के लिए. उशबा तक ट्रैफिक तो काफ़ी डेंस है. सो मेंटेन द पेशेंस. और ये तो है कि कई जगहों पर इस समय पुलिस ऑफिसर्स तैनात है टू मेक श्योर कि ट्रैफिक में कोई मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो. और यहाँ पर बेशक टू हैव अ सेफ जर्नी. रेडियो मस्ती बिल्कुल आप ही के साथ है टू कीप यू अपडेटेड.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स. आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: sélection puis continuer d'encore finir la compétition débat climat. Bonnes élèves depuis 8 collèges qui finissent sélectionnés, finissent parés pour porter à toute l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 13 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
1: RM2 Radio Musty. Feel the Musty.
2: And yes, we have got Musty music for everyone. Thank you for connecting with the Aaj Ka Raftaar Vibes. Be with Hansini after 7 p.m. और यहाँ पर ये जो ज़बरदस्त गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बस आज काम करेंगे रात भर. मे बी आज आपका नाइट शिफ्ट होने वाला है, सकुराश आपका जो काम है शुरू हो गया है. एंड गिविंग यू सम मोर एनर्जी विद रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ फ्लेवर्स यहाँ पर. और जितने भी हमारे फ्रेंड्स

अभी घर वापस जा रहे हैं. मुझे पता है कि आज का दिन दैट वाज नॉट दैट इजी ना, लेकिन अभी इजी बनाएंगे. जो स्ट्रेस है हम उनको दूर करेंगे. जस्ट लिसन टू द बेस्ट राइट हियर राइट नाउ. और ये आपके लिए है युवराज. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती. एंड अभी ट्यूशन इज ओवर और अभी घर वापस आप जा रहे हो. सो हैव सम रेस्ट एंड या सी यू सून. और यही गाना डेडिकेटेड है फॉर पापा महन के लिए, फॉर योर वंश एंड फॉर ऑल योर फ्रेंड्स जो अभी घर वापस जा रहे हैं. हैव अ ग्रेट इवनिंग.

0: करने के लिए वेली होप कि सब ठीक है और जो हमारे दोस्त ऑलरेडी घर पहुंच गए हैं आई नो कितना सारा काम है ना किचन जो कामकाज है कितना सारा पड़ा हुआ है लेकिन टेक अ डीप ब्रेथ और आराम से आप कर जाएंगे क्योंकि हौसला जो है हम बुलंद रखेंगे विद म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती थैंकिंग यू फॉर बीइंग साथ साथ एंड अ बिग हेलो टू नितीश थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन जो गाने तराने आप एंजॉय कर रहे हो इन रफ्तार वाइब्स यहाँ पर गाना है आपकी प्यारी सी मामा मीला के लिए एंड सभी रामदिकल परिवार के लिए फॉर आरजे दिव्या एंड आरजे परी के लिए भी जो बस साथ निभाते रहते हैं टाइम टू टाइम ऑन आवर रेडियो लेकिन अभी आई रियली होप कि इस समय वो सुन रही है और डेडिकेशन उनके नाम जरूर हो जाएगा एक प्यारा सा गाना उन सभी के लिए जो यहाँ पर कनेक्टेड है हेलो टू सीता विशिंग क्रिशा अ वेरी हैप्पी बर्थडे शी इज माई एंजल गर्ल एंड अभी हंसनी सम प्रिपरेशंस ऑल गोइंग ऑन एंड थैंकफुली टू रेडियो मस्ती ये तो है टू आडन सम मस्ती बिल्कुल एंड छोटी सी जो एंजल है इज गेटिंग रेडी बस अपनी क्यूट फ्रॉक के साथ वो आईने के बस अच्छा आईने को देख देख कर शी इज सेइंग कि मैं तो परी लग रही हूँ शी इज इंडीड योर एंजल थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फोटोज और रेडियो मस्ती इज हियर आपके इस ओकेजन को और भी खास बनाने के लिए वी हैव गॉट सो मेनी रीजंस हमारे पास वजह तो है बस ढूंढ लेते हैं टू बी मोर स्पेशल और भी करीब आने के लिए आप के यहाँ और रेडियो मस्ती इज हियर टू ऐड सम मोर हैप्पीनेस तो यहाँ पर खुशियों में शामिल हम होने वाले हैं ऑन 5491294 ऑन योर मैसेजेस डेडिकेशन ऑन 5491294 आप ही का इंतजार यहाँ पर रहेगा
1: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
2: आर एम टू

0: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: RM2
3: Radio Musti
2: Feel the Musti
4: Aaja ve aaja Haaye sajna mainu lut le gaya Haaye
3: sajna mainu lut le gaya Radio Musti
2: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti All the way The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: RM2.
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
5: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
6: रेडियो मस्ती पर इट्स रफ्तार वाइब्स वदाउट यू हंसनी, लेट्स कंटिन्यू द शो। यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल टिप, हाउ टू लुक मोर स्टाइलिश। वैसे सर्दी का मौसम है ना, सर्द छा गया है हाँ, और हमारे वार्डरोब के पुलओवर्स बाहर तो आ गई है राइट, और अनेक तरह के कलर्स भी बाहर निकल चुके हैं, लेकिन कैसे चूज करें। और रोज़ाना जब हम काम पर जाएंगे या फिर घूमने के लिए जाएंगे तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पुलओवर्स को, एक छोटा सा टिप। पुलओवर को ना बहुत टाइट हो ना ही बहुत ढीला, ये आपको बस ठीक से देखना है कि क्या वो फिट है आप पर। कंधों और बाजुओं की फिटिंग पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा राइट, और बिल्कुल लेयरिंग आप कर लीजिए। पुलओवर के नीचे कलर वाली जो शर्ट है पहनी, इससे क्या होगा, इससे आप और भी ज़्यादा स्मार्ट और क्लासी लुक मिल जाएगा। शर्ट का कलर और कफ थोड़ा दिखाई दे तो स्टाइल और निखर जाएगा। और रंगों की बात करें तो रंगों का संतुलन भी आपको रखना पड़ेगा अगर आप चूज करेंगे अपने पुलओवर्स को। नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ये सब रंग आसानी से मैच हो जाते हैं ना। चमकीले रंगों के पुलओवर के साथ साधारण रंग की पैंट आपको पहनना पड़ेगा, तभी तो आपका जो पुलओवर है वो और भी ज़्यादा दिख जाएगा ना। और पुलओवर को जीन्स या ट्राउजर के साथ ही आपको पहनना है, इससे जो लुक है वो ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा। वी नेक पुलोवर शर्ट और टाई के साथ अच्छे लगते हैं। क्रू नेक की बात करें तो क्रू नेक पुलोवर अगर आपके पास है तो ये भी आप यूज कर सकेंगे। ये तो कैजुअल, और अगर आप जा रही हैं सुपरमार्केट या फिर ऐसे ही कैजुअल आउटिंग के लिए जा रही हो तो इसका उपयोग जरूर आप कर सकेंगे। इट विल लुक स्टाइलिश एंड आपका जो लुक है वो कुछ ज्यादा निखर आएगा। ये था एक छोटा सा फैशन टिप।
5: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 Radio Musti.

नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूरोपीय संघ और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मादागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर आज बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए। गाड़ी चलाते हुए अब अपने मोबाइल फोन पर मात्र एक नज़र डालने से भी आपको पेनल्टी पॉइंट्स लग सकते हैं। अब से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ में फोन लेना एक दंडनीय अपराध है। स्टीवन मुतुकोपेन मामले में आजसू के पूर्व ऑफिसर कोविलेन संगारन पीले को आज मोका की अदालत में पेश किया गया। उस पर करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स के आयात की कथित साजिश में शामिल होने का शक है, जिसकी कीमत करीब 200 मिलियन रुपए की बताई जाती है।

0: विदेश स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरा करके इतिहास रचा। इससे भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपीय संघ और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मारागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर आज बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए। व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों संगठनों के बीच 6 सालों तक बातचीत के सकारात्मक नतीजे के रूप में ये हस्ताक्षर किए गए। करुणा लालू।
1: 6 वर्षों की बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया गया। 10 जून 2026 को बालाक्लावा में यूरोपीय संघ तथा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मारागास्कर, सेशल्स और यूनियन ऑफ कोमोरो के प्रतिनिधियों ने एक उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ताओं के सफल समापन की घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना, निवेश को आकर्षित करना और साझेदारी को और भी मजबूत बनाना है। मॉरिशस के लिए ये समझौता निर्यातकों, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही 450 मिलियन उपभोक्ता वाले यूरोपीय बाजार तक उसकी विशेष पहुंच को और मजबूत करेगा। ब्रसेल्स की ओर से समझौते को यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। यूरोपीय आयोग का मानना है कि ये समझौता साझेदार देशों में रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा। व्यापार के अलावा ये समझौता सार्वजनिक खरीद, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल करता है। क्षेत्र के कई मंत्रियों की उपस्थिति इस साझेदारी के महत्व को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक लचीला बनाना है। मॉरिशस का निजी क्षेत्र भी इस विकास पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मानना है कि ये समझौता नए बाजारों तक पहुँच बनाने और अधिक मूल्यवर्धित क्षेत्रों में विस्तार का महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। ये उन्नत समझौता भविष्य में यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक नए मानक के रूप में देखा जा रहा है। हस्ताक्षर और अनुमोदन की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यूरोपीय आयोग के अनुसार इसके 2027 के अंत तक लागू होने की संभावना है।
0: गाड़ी चलाते हुए अब अपने मोबाइल फ़ोन पर एकमात्र नज़र डालने से भी आपको पेनल्टी पॉइंट्स लग सकते हैं। जी हाँ, आपसे गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ में फ़ोन लेना एक दंडनीय अपराध है। ये इन सब के बीच क्या जीपीएस डिवाइस या हैंड्स फ्री के इस्तेमाल और आपातकालीन परिस्थितियों में फ़ोन के प्रयोग की अनुमति है, इस पर परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कई सवालों के स्पष्टीकरण दिए। इस पर रिपोर्ट हम कुछ ही देर में प्रसारित करेंगे। तो नए कानून पर रिपोर्ट तैयार है, सुनिए।
1: 10 जून की मध्य रात्रि से यदि आप कार अथवा मोटरसाइकिल चलाते वक्त हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए पाए गए तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर 5 अंक काटे जाएंगे। यदि आप इस उल्लंघन को चुनौती देते हैं और बाद में अदालत में आपको दोषी पाया जाता है तो 10 अंक काटे जाएंगे।
2: En tant que moniteur, l'État nous montre les élèves. C'est tout une mouton. Mais comment vous êtes sorti de cette vignette? Vous n'avez pas suivi aucune instruction.
3: Comment tu as conseillé de laisser un portable se contrôler avec lui? Et quand passe ce téléphone là, il se contrôler, il a regardé qui est le portable qui est là. Et qu'a causé? C'est vraiment portable, vous l'avez beaucoup dangereux.
4: Laisse-moi peut causer que mon passage. Après ça, pourquoi vous pouvez le téléphone?
5: Il y a un véhicule moderne qui est un building system. Normalement, en Europe, en Angleterre, illégal. Mais c'est pourquoi, sinon, nous utilisons pêche une voiture pareille, vine sur le marché local.
1: अब सब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हैंड्स फ्री किट, ब्लूटूथ डिवाइस, स्टीयरिंग व्हील में लगे कंट्रोल या अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। भले ही आपके लाइसेंस पर अंक न काटे जाए, कुछ गैजेट्स

0: और तकनीकों का उपयोग करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान 15 साल से अधिक पुराने कानून में पहले से मौजूद हैं।
1: रेगुलेशन रोड ट्रैफिक एक्ट कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ व्हीकल रेगुलेशन 2010 रेगुलेशन 90 qui lie à the material time, ça veut dire ces ans de cela, et tu focus l'eau, la construction du bon véhicule, ça veut dire ce système de freinage, ce système de châssis, ce système de, d'échappement, etc. Mais à cette époque-là, je n'inclus le système de communication là-dedans, et quand on regarde les aujourd'hui, tout ça qui appelle, qui nous est là comme évolution technologique dans la saison qui vient de traverser là, et l'y inclut là-dedans. La loi, c'est la loi, c'est pour cela qu'ils vont dire, qu'il y a une petite confusion qui finit au cœur, à partir de sa implémentation de un amendement pour pénaliser pour le système lié là. Quelque part, il y a un côté positif là-dedans, parce qu'il nous permet de revoir sa régulation qui datait de ces ans-là, et pour aller lier avec développement qui finit dans une voiture aujourd'hui.
0: क्या हाथ में मोबाइल रखने के नियम में कोई अपवाद भी है? उदाहरण के लिए डिलीवरी कर्मियों या टैक्सी चालकों के लिए, जिनका काम काफी हद तक मोबाइल पर निर्भर करता है, या फिर यदि आप किसी बीमार को ले जा रहे हो और डॉक्टर या परिवार के किसी सदस्य को फोन करना आवश्यक हो।
1: Comme on peut la loi qui se fait en 2010, les gens comme ça, while driving a motor vehicle, no subject to paragraph, no person shall, while driving a motor vehicle, use a handheld or hand-free microphone or telephone handset to answer or make a call, no matter how urgent the call is.
0: अब तक पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत जारी 6,450 चालानों में से 1,113 ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल से संबंधित हैं, यानी कि 17% तक।
1: Quand on fait PMI après, nous pas augmente l'amende du tout. Beaucoup de monde peut dire qu'il nous peut faire ça pour renflouer la caisse de l'État. Oh, c'est pas vrai, parce qu'au lieu qu'il nous peut prendre casse, qu'il nous peut prendre en plus, tout ne reste pareil, nous peut donner point.
0: फिलहाल यदि आप अपने लाइसेंस पर अंक कटने से बचना चाहते हैं तो वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचें।
2: स्टीवन ओटोकॉपन मामले में एफसीसी के जांच में नया घटनाक्रम सामने आए हैं। पिछले 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए आजसू के एक पूर्व ऑफिसर कोविलेन संगहन पीले को इस नए मामले में आज मुका की अदालत में पेश किया गया। 37 वर्षीय इस व्यक्ति पर करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स के आयात की कथित साजिश में शामिल होने का शक किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 200 मिलियन रुपए की बताई जाती है। जांचकर्ता ने उसकी जमानत पर रिहाई को लेकर आपत्ति जताई। विधि मासिपुरन
3: 37 वर्षीय कोविलेन संगहन पीले मर्दी, जो पहले आजसू में तैनात थे, को मंगलवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एफसीसी द्वारा साजिश के एक अस्थायी आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये मामला एफसीसी की उन जांचों की निरंतरता में है, जिनके परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2025 को ड्रग तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में स्टीवन मुतुकापन की गिरफ्तारी हुई थी। एफसीसी के अनुसार इस जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन्स के विश्लेषण से ऐसे संवाद सामने आए हैं, जिनसे इस संदिग्ध और आजसू के अन्य पूर्व या वर्तमान सदस्यों के बीच एक साजिश होने का अंदेशा है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस नेटवर्क ने मॉरिशस में लगभग 11 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स के आयात को आसान बनाने की कोशिश की थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 200 मिलियन रुपए है। इस बुधवार को मुका अदालत में पेश किए जाने पर कोविलेन संगहन पीले मर्दे को अपनी जमानत के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ा। उसे 17 जून तक फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसकी जमानत पर रिहाई की याचिका पर अदालत द्वारा आगामी 18 जून को विचार किया जाएगा।
2: बजट 2026-2027 की प्रस्तुति में अब मात्र 9 दिन रह गए हैं। गवर्नमेंट हाउस में तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। बजट सुदृढ़ करने, आर्थिक सुधार लाने और अंतिम निर्णय लेने के लिए टीमें नई अनिश्चितताओं से भरे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में इस विशेष रूप से जटिल कार्य को अंतिम रूप देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विधि मासिपुरन
3: कुछ ही दिनों में सरकार राष्ट्रसभा में अपना राष्ट्रीय बजट 2026-2027 पेश करेगी। वित्त मंत्रालय में अब अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता के साथ परामर्श समाप्त हो चुके हैं। प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है और बजट प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालय

बैंकों के साथ चर्चा जारी है। आगामी वित्तीय वर्ष के हर एक विवरण को सावधानीपूर्वक अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय से सीनियर एडवाइजर एरिक निंग पिंग चन बताते हैं, कार्य सक्रिय है। वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच एक पॉलिसी डायलॉग है। निजी सेक्टरों के साथ परामर्श किए जा चुके हैं और जनता ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। कार्यों में तेजी लाई जा रही है। बजट भाषण को तैयार किया जा रहा है।

0: बाधाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। पिछले साल की तुलना में दो कारक उभर कर सामने आए हैं जो थोड़ा सा भिन्न है, शायद पिछले साल की तुलना में थोड़ा मुश्किल भी। पिछले साल शागस समझौते को 10 बिलियन रुपए को फाइनलाइज करने पर निर्भर कर रहे थे और उसे बजट में शामिल किया गया था, लेकिन ये पैसा नहीं मिला। अब इस आगामी बजट में शागस को शामिल भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल ईरान युद्ध नहीं था, फिर भी फिस्कल कंसोलिडेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बजट घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करना, साथ ही वृद्धि भी लानी चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा भी आवश्यक
1: है।
0: इसके साथ ही वित्त मंत्रालय बजट प्रक्रिया की सफलता के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने और आयातित उत्पादों पर निर्भरता घटाने के महत्व पर जोर देता है, ताकि देश के आयात बिल को कम करके व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जा सके और मॉरिशस के रुपए की स्थिरता में योगदान दिया जा सके। इस महत्वपूर्ण बजट भाषण का समय आगामी शुक्रवार 19 जून को शाम 5 बजे राष्ट्रसभा में तय किया गया है, जो कि एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण आर्थिक संदर्भ में काफी प्रतीक्षित बजट है।
2: मॉरिशस अब्सा लिमिटेड ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ये वरिष्ठ बैंकिंग संस्था अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के बीच निवेश, व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजिक पुल की भूमिका निभाती है। इस बात की पुष्टि ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केनी फिला ने आज की। उन्होंने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टल में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की। हर विश्व कप के दौरान जहां फुटबॉल प्रेमियों में अपनी पसंदीदा टीमों के लिए उत्साह होता है, वहीं कुछ लोग स्टिकर्स जमा करने विश्व कप का आनंद जीते हैं। कल 11 जून से फुटबॉल का महोत्सव शुरू हो रहा है। टीवी पर मैचों के इंतजार के साथ बड़े छोटे सभी फैंस खिलाड़ियों के स्टिकर्स जमा करके अपने एल्बम भरने में लगे हुए हैं। विधि मासीपुर।
0: एक तरफ स्टिकर्स हैं तो दूसरी तरफ गायब नंबरों की जांच करने के लिए एक कागज या एक एप्लीकेशन। यहाँ अदला बदली बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। आशनी अपने बच्चों के शौक को साझा करने के लिए इन स्टिकर्स को इकट्ठा करती हैं।
3: Oui les garçons, quand depuis j'avais commencé en plus à livre là, je suis vraiment excitée tous les soirs. Maman, est-ce que tu as eu les cartes? Maman, qu'est-ce qu'on manque? Et c'est vraiment vraiment un joli plaisir.
0: सोशल मीडिया पर बने इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य हर किसी को अपना एल्बम पूरा करने की सुविधा देना है।
4: Fini bout 2026 là, mais on peut continuer une zone pour mes camarades, soit là le Ben Swapping Zone. Il y a une nouvelle de mes camarades pour compléter notre album petit à petit.
5: Longtemps ici comme ça, batch tout ça là, c'est comme ça 5 pour 1, 10 pour 1, mais non, aujourd'hui non. Mais il y a un garçon qui m'a dit, il m'a dit Ronaldo, pour terminer ce livre, il a dit des stickers, duplicate.
0: मॉरिशस में वर्ल्ड कप के इन एल्बम्स के लिए क्रेज 1982 से चली आ रही है, जब स्पेन में विश्व कप हुआ था।
6: Espagne 1982,
0: तब से ये उत्साह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब भी हम इन किताबों को खोलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।
7: Le fameux dinosaure. Ça vaut Glaikman, goalkeeper éternel, ça. Par contre, pour combien de World Cup, une barre, est-ce qu'il est passable?
8: À part pour Coupe du Monde, est-ce qu'il y a un petit réfait avant le magazine?
7: Quelquefois, oui, mon Féli. Ramène mon souvenir, Zénith, façon de dire. Ouais, assez souvent, mon Féli. Je garde bien dans ma bibliothèque pour remarquer qu'il y a une bonne condition de ses affaires.
0: Is bade khel ayojan ke aagaz mein ab bas kuch hi ghante baki hain. Kuch log abhi bhi sabhi stickers ikattha karne mein jute hue hain.
9: Namo mok descend code pour finir le livre. Mais là nous peut roder 111 parce que maintenant 300 double pour là. Là ici aujourd'hui mon 100 RP, là mon remplacer mon gété. Ça veut dire nous peut remplir le livre là des madame et moi.
0: वहीं कुछ लोग इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं।
10: On descend pour compléter et quand vous avez une photo c'était un Ghana Jordan Ayew.
8: Qu'est-ce que ça sentiment qui anime toi là quand tu finis ta livre là?
11: Un soulagement et Un contentement aussi.
0: करीब 9000 रुपए की लागत के बावजूद विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले इस कलेक्शन को पूरा करना प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और गर्व का क्षण बना हुआ है।
2: श्री नरेंद्र

0: मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरा करके इतिहास रचा है। इससे वे भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार किया है। 12 सालों में भारत को प्रगति की राह पर अग्रसर करने के लिए कैबिनेट की मोदी जी की ने उन्हें बधाइयां दी। याचना मिश्रा।
1: बारह साल भारत के विकास के नाम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर से उन्हें इस बात के लिए बधाइयां दी जा रही हैं। साल 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने 2019 और 2024 के आम चुनावों में भी लगातार जीत हासिल की। इस तरह वे लगातार जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए देश का नेतृत्व करने वाले सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा बटोरी है। ऊर्जा सुधार, जल संचालन, आर्थिक विकास, मूल ढांचा, एक दीर्घकालिक विजन जो भारत को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। भूमि से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय करने वाले नए भारत का विजन, जिसके लिए अब भी कार्य जारी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। अब ये उपलब्धि श्री नरेंद्र मोदी के नाम भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो चुका है।

और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के उत्तर और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। कल दोपहर बाद के मौसम की बात करें तो देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 18 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:37 पर हो गया है। सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:41 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। ब्रांच रोड मोनाको में 62 साल के 62 years old के तिलक राज सीताराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सीवान मोंटो के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान मोनाको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्ड्रीमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। रॉयल रोड कटकुकू में 50 साल के 50 years old के अजय लुबिन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जान के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके ससुर सूरज देव हीरालाल के मकान काटकू

0: खाकों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून। कॉलोव्यू ओकुले में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की धनवंती मोगन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उन्हें के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। एवेन्यू कुसियाल पलमा कट्रोबोन में 75 ईयर्स ओल्ड के रामजी तुकाराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किसना के नाम से अधिक जानते थे। वे पहले CNT में काम करते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयल रोड पंचवती रिविया जुरांपोर में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के राज जीबोसिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुरेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी सरोदा चिबोसिया के मकान रिविया जुरांपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट एलास्को की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। इंग्लैंड में 79 ईयर्स ओल्ड की देवी एरामा अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम शेनिगाडू, लोग उन्हें देवी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दोपहर बाद 2 बजे इंग्लैंड में ही उठाई जाएगी। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti.

0: 6:28 PM. Thank you for joining in on Radio Masti. यहाँ पर रफ्तार वाइब्स हैं और जो खास गाने हम लेकर आ रहे हैं, बस really hope you will enjoy the rest of the show. एंड वैसे 4 बजे से इट्स रफ्तार वाइब्स और काम से निकल कर आप घर वापस तो जा रहे थे. वेरी होप कि आप बिल्कुल महफूज हो और सेफ एंड साउंड आप घर पहुंच गए होंगे. एंड अभी घर पर होकर जो काम काज हो रहा है, घर की साफ सफाई या फिर डिनर की प्रिपरेशन जारी हो गई है ना. सो सेंडिंग यू लस ऑफ कुराज, लस ऑफ गुड एनर्जी यहाँ पर हमारे गानों के जरिए. और जो हमारे दोस्त अभी घर वापस जा रहे हैं, सो विश यू अ सेफ जर्नी बैक होम. और जितने भी स्ट्रेस रहे होंगे उन सब से दूर आपको ले चलेंगे इन अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर हम रिलैक्स करने वाले हैं, अपने मन को अपने दिमाग को शांत रखेंगे. वेल स्टे कॉल्म. और जितने भी स्ट्रेस रहे होंगे उन सभी को हम दूर करेंगे विद द मैजिक ऑफ म्यूजिक, जो हम लेकर आएंगे यहाँ ऑन रेडियो मस्ती. और आज के लिए हम सनी हैं आपके साथ, सेलिब्रेटिंग दिस मिड वीक वेंसडे का ये दिन 10 जून. और जितने भी हमारे दोस्त आज अपना स्पेशल दिन मना रहे हैं, हाँ जी आज आपका जन्मदिन है ना, सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वाला बर्थडे. और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमेशा आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, जो खुशियाँ हैं बस आपकी झोली में रहे हमेशा के लिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं. लेट अस बी टुगेदर एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स, जहाँ पर भी रेडियो मस्ती की गूंज है. इट्स अ वार्म वेलकम.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स.
2: RM2 Radio

That was a romantic one, अपना बना ले और किसी को अपनाना आप चाहेंगी और उनकी उनके लिए बस दिल की बातें बयां करना चाहेंगे. सो दिस इज अ वे जहां पर दिल की बातें बयां हो जाती है राइट अवे ऑन 5499 1294. वी कंटिन्यू विद द वाइब्स, रफ्तार वाइब्स है यहां पर. रफ्तार ना हो रास्ते पर, प्लीज स्टे इन द स्पीड लिमिट जहां पर स्पीड लिमिट रखा गया है. डू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हैव अ सेफ जर्नी बैक. और यहां पर टाइम फॉर सम डेडिकेशंस जहां पर प्यार से अपनों को आपने याद किया है ना. चलेंगे कालू जी और शैला जी के यहां. हेलो कैसी हो. आज अनीस का जन्मदिन है. शी इज नीताशा. विश हर ऑल द बेस्ट इन लाइफ एंड ऑलवेज शी ब्लूम्स एंड शाइन्स जहां पर भी जिंदगी उनको ले जाएंगी. शी कीप्स बीइंग हैप्पी. Happy birthday coming from Mama Saroj, from Papa Anandev, और पूरे मंगो families है. एंड साथ में है dearest cousins Laksh, Manashvi and Jyotisha. Sending lots of good wishes to you and have a great Janamdin. Next one to wish beta Nivesh Bapu, happy birthday. निवेश बापा आपको बस ब्लेस करे विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. खुशियाँ आपको मिले, प्रॉस्पेरिटी और ढेर सारी जो शुभकामनाएँ हैं. कमिंग फ्रॉम योर मामा, फ्रॉम योर डैड, फ्रॉम योर आजी और साथ में है मामा और साथ में है विनय. साथ निभाने के लिए थैंक यू सो मच निवेश बापू को. हैप्पी बर्थडे अगेन फ्रॉम ऑल द टीम. इसके बाद लेट्स गो टू टायक एंजॉयिंग द सॉन्ग सिलेक्शंस इन रफ्तार वाइब्स. आप हो बदवाग विदेशी जी, रली हो कि सब ठीक है और सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पर गाना चल जाएगा आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए. सो अपनों को याद करें, ये तो अपना

0: मन है, प्यार है, दोस्ती है, जहां पर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है वहां पर हम चले आए हैं आप लोगों का साथ निभाने के लिए. और जहां सनी विद यू फॉर आज का रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
1: रेडियो मस्ती।
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन

0: को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2 Radio Musti. Searching out.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
0: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
2: आरएम2।
3: रेडियो मस्ती।

0: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया है। यहाँ पर हम तो है राही प्यार के और चलते चलते आप लोगों से मिलते रहते हैं ऑन रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए आपकी हम सफर बनने के लिए आ गई है हमारी प्यारी सी मनीषमा, शी इज हियर। हेलो जी, वेलकम। भागे जा रही है माइक यार।
1: यस यस यस, क्यों ना बात करें।
0: गुड इवनिंग टू यू,
1: गुड इवनिंग टू यू टू हंसू, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आरएम टू।
0: अच्छा, कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ। वैसे आते आते आपने जब पूछा ना, माँ की तरफ पूछा सवाल, क्या खाना खाया? आई सेड यस, मैंने रोटी खाई।
0: यस,
1: अभी हम बात करेंगे ना सभी से, क्या उन्होंने खाया।
0: बिल्कुल, क्या कर रहे हैं लोग, जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स डिनर प्रिपेयर करेंगे या फिर सम तो डिनर भी लेंगे।
1: या यू नो हंसू, ये बहुत अच्छी बात हम फील करते हैं कभी कभी, यू आर आजे, हम भी आजे, जब भी वो लोग अकेले खाते हैं हम शामिल हो जाते हैं उनके साथ, कोई अकेला नहीं फील हो सकता।
0: और पता है जब हमारे लिसनर्स ऐसे लजीज खाना बनाते हैं तो खुशबू यहाँ तक आती है,
1: ऊपर से इतनी डिटेल में भेजते हैं ना फोटो वोटो, मैं ना कभी कभी
0: यहाँ पे बैठे बैठे भूख लग जाती है,
1: सैड हो जाती है। मैंने रोटी खाए, वो लोग बिरयानी खा रहे हैं, क्या बात है।
0: कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आएंगे तो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।
1: ओ यस यस,
0: या फिर मिलकर बनाएंगे,
1: ये बेटर है।
0: ओके, सो मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड द रेस्ट ऑफ द शो विल बी विद मनीषमा। वो तो आ रही है लेकर आज का इवनिंग लाउंज।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती,
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
7: Good evening. You're well tuned RM2 Radio Musti time check. It's 7 PM.
8: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: आंखें खुली हो या होवन, वैसे ये 24 hours सर्विस हमारे लिए और आपके लिए ऑन रहता है। ये है RM2 रेडियो मस्ती। वेलकम, स्वागत है आप सभी का इन योर इवनिंग लाउंज, यहाँ पर मनीष मैं आपका साथ निभा रही है रात्रि के 9 बजे तक।
1: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
0: अरे दीवानो कहाँ चले, उठ इतना रंग के वाजे, या फिर कुछ प्यार भरी गाने और आपके इवनिंग को मस्त बनाने। हम तो यूं ही चले जाते हैं, कभी कभी बड़ा मजा आता है आपके मैसेजेस पढ़ने में और आपसे बात करने में भी। ये रहा नंबर हमसे बात करने के लिए। अरे हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, बताइएगा दिल का हाल क्या है।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Masti.
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनाओ.
2: सुना.
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे. आदाब.
0: You're listening to a Radio Masti.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

ओए ओए क्या बात है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। यहाँ पर इवनिंग लाउंज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मैं मनीष माही, here we go for your messages। वाइफ को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर हिज लाइफ। मेरे तीन भाई हैं, वशिष, लक्ष्य, नकुल और दामाद है बाबा, ग्रैंड डॉटर पोशिका एंड ग्रैंड सॉन है अक्षित। ऑल्सो यहाँ पर हेलो जी नमस्ते, तीना बाबूलाल हियर फ्रॉम मोदाल बे, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माई दादी अनीता। आज 75th बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्या बात है। God bless her with abundance of khushiyan and health, good health. Also, best wishes from Arshna, Tina, Vinod, Vimal, Vishal, Manish and Pooja from France. Wishes of happy birthday also from Babula family of Modalbeya and for your team, from your team. Also, thank you so much. Aget here. नमस्ते जी, अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए मोताई ब्लॉन्च से धन्यवाद देते हैं। अभी के लिए हम साथ में विश करना चाहते हैं टू ऑल डू सेलिब्रेटिंग दे स्पेशल डे जिन्होंने मिस कर दिया है। ट्राई टू रिमेम्बर आज किन किन का जन्मदिन है बताइएगा हमको, और साथ ही हम विश करना चाहते हैं आरएम2 रेडियो मस्ती की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: चलिए अपनों के साथ ढेर सारी यादें बनाइएगा और हर एक दिन को स्टेप बाय स्टेप दिन पर डे आप लीजिएगा और ज़िंदगी को करीब से जिए और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और बी द रीज़न समबडीज़ हैज़ अ स्माइल ऑन देयर फेस आल्सो ओके नो स्ट्रेस ओनली स्माइल ऑन द फेस
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: का मतलब होता है ना, कभी कभी हमको एहसास भी नहीं होता कि चुपके से कोई आ गया हमारी जिंदगी में, और उसके जाने के बाद ही उनका एहसास होता है कि यार कितना प्यार करते हैं हम। वैसे उन सारे अधूरे और इनकम्प्लीट लव स्टोरी के लिए ये गाना। वैसे आई कैन हियर सम रियली नाइस सॉन्ग जाओ ना मूवी से, एक्चुअली व्हाट्स योर राशि मूवी से जाओ ना सॉन्ग कमिंग अप फॉर यू राइट अवे राइट नाउ। 7:45 हो रहे हैं, अपडेट है आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ।
1: आरएम टू रेडियो मस्ती।
0: पर गिरेश हरलो ने मैसेज भेजा है टुडे कबीर का बर्थडे है और विशेस फ्रॉम मामा रोशनी, पापा कमल, सिस्टर है ईशिका एंड सिस्टर रिया। प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग 8:30 से पहले। अरे 8:30 से पहले ही हमने चला दिया। वैसे ये गाना स्पेशली फॉर हिम ऑल्सो। नमस्कार जी, गिव अ सॉन्ग फॉर वीमा कमलन चिलन, 25th एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी फॉर फ्रॉम डुवाली कमिशिया जानी सारिका पूनम शामुनी से साथ निभा रहे हैं यहाँ पर। मनीषमा जी कैसे आप, वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग बजा रहे हैं आप, क्या बात है। बहना शोभा अनुराधा लक्ष्मी आपके लिए, सभी रेडियो मस्टी टीम के लिए भी, मुखवाश अनीता फ्रॉम फ्लिकॉन्फ।

0: सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर, वैसे 7 बजे से लेकर यहाँ पर 9 बजे तक ये प्यार भरे गाने हम चुन कर लाते हैं आपके लिए, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं टिल 9 PM. वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ कोर्स योर इवनिंग लाउंज विद मी मनीष. आई हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

वैसे यहाँ पर आपकी हवाएं क्या कर रही है, आपकी दिशा कहाँ जा रही है, आप सब कुछ बता सकते हैं 9549912 94 पर। मैसेजेस डेडिकेशंस का टाइम भी आ जाएगा यहाँ पर थोड़ी देर में इस गाने के बाद। लेकर आते हैं

0: रेडियो मस्ती।
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: 8:40 हुए हैं। यहाँ पर आपका दिल क्या मानता है? वैसे बहुत सारी हमारी मान्यता होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कभी कभी हम अपने खुद के प्रिंसिपल्स में जाकर दब जाते हैं, दिल की बात नहीं कह पाते। वैसे यहाँ पर मंच तो है ही 5491294 पर दिल की बात शेयर करने के लिए। हैव ए वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग आउट देयर। मनीष्मा का साथ है जी, बस करीबन 19 मिनट बाकी।

0: You're listening to RM2, a radio must-see.
1: तो चलिए जी, ये गाना चल पड़ा है स्पेशली फॉर युतीश, जो कि हमारे साथ है, अभी गाली चढ़ा रहे हैं, वैसे थोड़ा सा सामर के ध्यान से ड्राइव सेफ, वी आर हियर टू कीप यू कंपनी। क्या हुआ कि आप अकेले अकेले कहीं पर जा रहे हैं, इस रास्ते पर आपने हमें जो शामिल किया है, जर्नी को आप एंजॉय कीजिएगा, चाहे मीलों का फासला हो।

0: चलिए जी, मिलो का जैसे था फासला। वैसे अभी के लिए जाने का समय हो चला है। यू टेक केयर गाइस। और जाने से पहले ये गाना चल पड़ा आप सभी के नाम।
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: and this song ratiya for you hansika pari ke baaz mein sheetal ke naam from husband shant girish ayansh liana sabhi ramlal parivar ke liye bhi bye bye see you next time

0: RM2 Radio Masti. Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: म्यूजिक लवर्स को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और रात के सुहाने सफर में आपका स्वागत है। 3 घंटे ढेर सारे बॉलीवुड के गाने और दिल से निकली हुई कुछ बातें, इन सबको साथ लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं विकास और आज का सफर भी होगा बहुत ही खास, लेट नाइट ग्रूव्स, जहाँ पर वक्त मिलता है इन गानों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जज्बातों के लिए। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा आगे चलते हैं, गानों के बाद एक बार फिर से मिलते हैं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: आजकल तो कितना साथ है टेक्नोलॉजी का, और जो भी आप कहना चाहते हैं अलग अंदाज में अलग अलग ऑप्शंस के साथ कह सकते हैं, आपको सारी ऑप्शंस मिल ही जाती है। नहीं, लेकिन कभी कभी एक गाना वही कह देता है जो हम सालों से किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज रात दिल की जुबान को सुरों में पिरोते हुए आपके साथ जुड़ गया हूँ इस लंबे सफर में। दिन कैसा था अभी तो वक्त ऐसा है कि हाल चाल पूछने के बाद मूड भी बनाएंगे, आपके लिए आपके फेवरेट गाने भी चलाएंगे।
0: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि अब लेट नाइट शिफ्ट में चल चुके हैं, या फिर कई लोग जो अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरा एक सेटिस्फेक्शन जरूर है।

0: ये कि आज का काम खत्म हुआ और आज इसने मेहनत कर ली, कल थोड़ा आराम कर सकता है। वैसे आराम करना इन गानों के साथ एक अलग ही जज्बात पैदा करता है। सभी के लिए म्यूजिकल कंपनी बिल्कुल तैयार है।
1: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती।
2: You're listening to RM2 रेडियो मस्ती।

0: कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आज का चैलेंज पूरा करके निकल पड़े हैं अपने घर की ओर थोड़ा सा आराम विश्राम करने के लिए। और एक बार फिर से जिंदगी एक और चैलेंज लेकर आएगी, हर दिन कुछ नया। वैसे हर रात एक नई उम्मीद भी तो लाती है, जहां पे लगता है कि आज जितना काम हुआ कल उसे दोगुना करेंगे, और कुछ रह भी गया अगर तो जिंदगी मौका देगी ना। बस अपने ऊपर से विश्वास कभी कम मत कीजिएगा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: लेट नाइट ग्रूव्स।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, वैसे सच्ची है। आप सोचिए कि कोई एक बहुत ही सीरियस वर्क प्लेस में और सडनली कोई बात शेयर करता है और मुस्कुराता है, हंसता है, वो जो हंसी है, जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर भी आती है। कैसे? अरे नहीं, इतनी डीप थॉट में मत जाइए कि कैसे। बस ये सोचिए, अगर आपके खुश होने से, आपके पॉजिटिव रहने से ये जो एलिमेंट है दूसरों तक पहुंचता है, तो क्यों ना हम भी उसका एक रीजन बन जाएं, खुशी और प्यार का सीजन बन जाएं, जिसके चलते बारिश हो प्यार की, खुशी की, दोस्ती की, और ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए।
4: लेट नाइट ग्रूव्स,
1: RM2, रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti. Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: म्यूजिक लवर्स को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और रात के सुहाने सफर में आपका स्वागत है। 3 घंटे ढेर सारे बॉलीवुड के गाने और दिल से निकली हुई कुछ बातें, इन सबको साथ लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं विकास और आज का सफर भी होगा बहुत ही खास, लेट नाइट ग्रूव्स, जहाँ पर वक्त मिलता है इन गानों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जज्बातों के लिए। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा आगे चलते हैं, गानों के बाद एक बार फिर से मिलते हैं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 Radio Musti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: आजकल तो कितना साथ है टेक्नोलॉजी का, और जो भी आप कहना चाहते हैं अलग अंदाज में अलग अलग ऑप्शंस के साथ कह सकते हैं, आपको सारी ऑप्शंस मिल ही जाती है नहीं। लेकिन कभी कभी एक गाना वही कह देता है जो हम सालों से किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज रात दिल की जुबान को सुरों में पिरोते हुए आपके साथ जुड़ गया हूँ इस लंबे सफर में। दिन कैसा था अभी तो वक्त ऐसा है कि हाल चाल पूछने के बाद मूड भी बनाएंगे, आपके लिए आपके फेवरेट गाने भी चलाएंगे।
2: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि अब लेट नाइट शिफ्ट में चल चुके हैं, या फिर कई लोग जो अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरा एक सेटिस्फैक्शन जरूर है, और वो ये कि आज का काम खत्म हुआ और आज इसने मेहनत कर ली, कल थोड़ा आराम कर सकता है। वैसे आराम करना इन गानों के साथ एक अलग ही जज्बात पैदा करता है। सभी के लिए म्यूजिकल कंपनी बिल्कुल तैयार है।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: You're listening to RM2, a radio musty.

0: इतने सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आज का चैलेंज पूरा करके निकल पड़े हैं अपने घर की ओर थोड़ा सा आराम विश्राम करने के लिए, और एक बार फिर से जिंदगी एक और चैलेंज लेकर आएगी। हर दिन कुछ नया, वैसे हर रात एक नई उम्मीद भी तो लाती है, जहां पे लगता है कि आज जितना काम हुआ कल उसे दोगुना करेंगे, और कुछ रह भी गया अगर तो जिंदगी मौका देगी ना। बस अपने ऊपर से विश्वास कभी कम मत कीजिएगा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, वैसे सच्ची है। आप सोचिए कि कोई एक बहुत ही सीरियस वर्क प्लेस में और सडनली कोई बात शेयर करता है और मुस्कुराता है, हंसता है, वो जो हंसी है, जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर भी आती है। कैसे? अरे नहीं, इतनी डीप थॉट में मत जाइए कि कैसे। बस ये सोचिए, अगर आपके खुश होने से, आपके पॉजिटिव रहने से ये जो एलिमेंट है दूसरों तक पहुंचता है, तो क्यों ना हम भी उसका एक रीजन बन जाएं, खुशी और प्यार का सीजन बन जाएं, जिसके चलते बारिश हो प्यार की, खुशी की, दोस्ती की, और ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: मस्ती भाई, आजकल के जमाने के हिसाब से सोचें तो ये जो यादें हैं ना, यादें वाईफाई की तरह हैं। जी हाँ, सही सुना, वाईफाई की तरह है। दिखती नहीं लेकिन कनेक्ट जरूर कर देती है। एक इंसान को दूसरे इंसान से जाने कब कैसे बस एक किस्सा सामने आया या कोई गाना सामने आया जिसको सुनकर आपने गुनगुनाया और फिर एक चेहरा आंखों के सामने आया। चलिए कुछ पुरानी यादों के साथ रिकनेक्ट करते हैं। अगर गाना नहीं पता तो शब्दों या इमोशन से कनेक्ट करते हैं।
2: लेट नाइट ग्रूव्स,
0: RM2, रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: भाई जरूरी है कि हर दिन अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, बड़ी हो या छोटी जो भी। अरे साहब, क्योंकि कहते हैं हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, इसलिए आपको आगे बढ़ते जाना है। और जाने कितने सारे लोग आप ही को अपनी मोटिवेशन मानकर यूं ही चलते जाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे।
1: Late night grooves. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: भाई बॉलीवुड सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशंस की एनसाइक्लोपीडिया है। आप सोचिएगी इतनी सारी मूवीज, इतनी सारी सिचुएशंस और हर एक मूड के लिए गाना। तो फिर आपको यही चाहूँ बताना कि कभी जिंदगी में कोई भी इमोशन वाली एक सिचुएशन आ जाए तो उसमें किसी गाने को सोचकर गुनगुना लीजिए, अरे मन को हल्का कर लीजिए और धीरे धीरे सच मानिए, अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इससे किसी का भला नहीं हुआ।
0: Late night grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: कभी किसी को सिर्फ इसलिए कॉल कर लीजिए क्योंकि आपको उनकी याद आ गई। हाँ, लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं ना। अब बस याद आ गई तो ठीक है, अब कहाँ डिस्टर्ब करें। लेकिन हो सकता है एक छोटे से मैसेज से, एक फोन कॉल से उसकी जिंदगी निखर जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए। कुछ रिश्तों को जिंदा रखने के लिए बस इतना ही काफी होता है, एक छोटा सा एफर्ट।
1: Late Night Grooves, RM2, Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: इंसान को कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रात का ये पल याद दिलाता है कि कल एक नया दिन होने वाला है और हर एक नया दिन एक फ्रेश बिगनिंग, एक नया मौका देता है जिंदगी को जी भर के जीने का। तो बस आज रात को थोड़ा सा विश्राम कीजिए और अपनी बैटरी को रिचार्ज करके एक बार फिर से शामिल हो जाइए उसी जोश और जज्बे के साथ जिसकी जरूरत है अपनी मंजिल को पाने के लिए।
0: Late night grooves.
1: RM2, Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 Radio Masti. Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: म्यूजिक लवर्स को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और रात के सुहाने सफर में आपका स्वागत है। 3 घंटे ढेर सारे बॉलीवुड के गाने और दिल से निकली हुई कुछ बातें, इन सबको साथ लेकर मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। मैं विकास और आज का सफर भी होगा बहुत ही खास, लेट नाइट ग्रूव्स, जहाँ पर वक्त मिलता है इन गानों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जज्बातों के लिए। तो फिर देर किस बात की, थोड़ा आगे चलते हैं, गानों के बाद एक बार फिर से मिलते हैं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: आजकल तो कितना साथ है टेक्नोलॉजी का, और जो भी आप कहना चाहते हैं अलग अंदाज में अलग अलग ऑप्शंस के साथ कह सकते हैं। आपको सारी ऑप्शंस मिल ही जाती है, नहीं लेकिन

0: कभी कभी एक गाना वही कह देता है जो हम सालों से किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज रात दिल की जुबान को सुरों में पिरोते हुए आपके साथ जुड़ गया हूँ इस लंबे सफर में। दिन कैसा था? अभी तो वक्त ऐसा है कि हाल चाल पूछने के बाद मूड भी बनाएंगे, आपके लिए आपके फेवरेट गाने भी चलाएंगे।
1: Late Night Grooves, RM2, Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, काफी लोग होते हैं जो कि अब लेट नाइट शिफ्ट में चल चुके हैं, या फिर कई लोग जो अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरा एक सेटिस्फैक्शन जरूर है। और वो ये कि आज का काम खत्म हुआ और आज इसने मेहनत कर ली, कल थोड़ा आराम कर सकता है। वैसे आराम करना इन गानों के साथ एक अलग ही जज्बात पैदा करता है। सभी के लिए म्यूजिकल कंपनी बिल्कुल तैयार है।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।
0: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: इतने सारे हमारे दोस्त हैं जो कि आज का चैलेंज पूरा करके निकल पड़े हैं अपने घर की ओर थोड़ा सा आराम विश्राम करने के लिए। और एक बार फिर से जिंदगी एक और चैलेंज लेकर आएगी, हर दिन कुछ नया। वैसे हर रात एक नई उम्मीद भी तो लाती है, जहां पे लगता है कि आज जितना काम हुआ कल उसे दोगुना करेंगे, और कुछ रह भी गया अगर तो जिंदगी मौका देगी ना। बस अपने ऊपर से विश्वास कभी कम मत कीजिएगा।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है,
3: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: लेट नाइट ग्रूव्स।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, वैसे सच्ची है। आप सोचिए कि कोई एक बहुत ही सीरियस वर्क प्लेस में हो, सडनली कोई बात शेयर करता है और मुस्कुराता है, हंसता है, वो जो हंसी है, जो खुशी है, वो आपके चेहरे पर भी आती है। कैसे? अरे नहीं, इतनी डीप थॉट में मत जाइए कि कैसे। बस ये सोचिए, अगर आपके खुश होने से, आपके पॉजिटिव रहने से ये जो एलिमेंट है दूसरों तक पहुंचता है, तो क्यों ना हम भी उसका एक रीजन बन जाएं, खुशी और प्यार का सीजन बन जाएं, जिसके चलते बारिश हो प्यार की, खुशी की, दोस्ती की, और ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए।
4: लेट नाइट ग्रूव्स,
1: RM2, रेडियो मस्ती।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: भाई इस रात की बात करें तो रात अपनी पूरी खूबसूरती में हर एक पल को बहुत ही सुनहरा बनाती जा रही है। इमोशंस और म्यूजिक का सफर, ये दोनों कमाल की कॉम्बिनेशन। अगर आपको वक्त मिल रहा है कि आराम से बैठकर आप इन गानों का मजा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल कमाल के जोन में। अरे ये म्यूजिकल जोन है या फिर कहें कि म्यूजिक थेरेपी ऑन है।
1: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: ये तो बात आपने सुनी होगी कि जिंदगी में जो भी है उस पर आप नाज करें। कितना मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो है उसकी कदर कीजिए, जो नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए, तो फिर एक ना एक दिन आप उसको हासिल कर ही लेंगे।
0: Late night grooves.
2: RM2 Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हम सब की अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट होती है। अब सोचिए आप उसी को शफल कर दें कि कौन सा गाना ऊपर कौन सा गाना नीचे, तो फिर लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा पसंद है ना, ये थोड़ा सा कम पसंद है। जिंदगी भी कुछ ऐसी है, बस सिचुएशंस ऐसी शफल हो जाती हैं। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन जो काफी आसान लगती हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन जो देखने में काफी कठिन लेकिन हाँ सिखा जरूर देती हैं। सो जिंदगी का सबक लेते जाओ और ऐसे आगे बढ़ते जाओ।
2: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: इंसान अपने आप को दूसरे से तुलना में लाकर बस मुश्किलें पैदा करता रहता है, अपने लिए और दूसरे के लिए भी। आज की रात का थॉट यही है कि किसी और से बेहतर बनने की जगह कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और देखिए साहब, जिंदगी बेहतर से बेहतरीन रंगों से रंगीन होती चली जाएगी।
0: लेट नाइट ग्रूव्स, RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वक्त ने एक खूबसूरत रात को यादों में बदल दिया। आपका साथ, आपका प्यार और बॉलीवुड के गाने, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सपनों को कभी सोने मत दीजिए। जल्दी मिलते हैं, शुभ रात्रि।
1: Late Night Grooves, RM2, Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Audio Musti. Feel the Musti.
1: Radio Musti.
2: भाई आजकल के ज़माने के हिसाब से सोचें तो ये जो यादें हैं ना, यादें वाईफाई की तरह हैं। जी हाँ, सही सुना, वाईफाई की तरह हैं। दिखती नहीं लेकिन कनेक्ट ज़रूर कर देती हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान से जाने कब कैसे, बस एक किस्सा सामने आया या कोई गाना सामने आया जिसको सुनकर आपने गुनगुनाया और फिर एक चेहरा आँखों के सामने आया। चलिए कुछ पुरानी यादों के साथ रिकनेक्ट करते हैं। अगर गाना नहीं पता तो शब्दों और इमोशन से कनेक्ट करते हैं।
1: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.

0: भाई जरूरी है कि हर दिन अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, बड़ी हो या छोटी जो भी। अरे साहब, क्योंकि कहते हैं हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, इसलिए आपको आगे बढ़ते जाना है। और जाने कितने सारे लोग आप ही को अपनी मोटिवेशन मानकर यूं ही चलते जाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे।
1: Late night grooves. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: भाई बॉलीवुड सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशंस की एनसाइक्लोपीडिया है। आप सोचिए कि इतनी सारी मूवीज, इतनी सारी सिचुएशंस और हर एक मूड के लिए गाना। तो फिर आपको यही चाहूँ बताना कि कभी जिंदगी में कोई भी इमोशन वाली एक सिचुएशन आ जाए तो उसमें किसी गाने को सोचकर गुनगुना लीजिए, अरे मन को हल्का कर लीजिए और धीरे धीरे सच मानिए, अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इससे किसी का भला नहीं हुआ।
0: Late night grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी किसी को सिर्फ इसलिए कॉल कर लीजिए क्योंकि आपको उनकी याद आ गई। हाँ, लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं ना। अब बस याद आ गई तो ठीक है, अब कहाँ डिस्टर्ब करें। लेकिन हो सकता है एक छोटे से मैसेज से, एक फोन कॉल से उसकी जिंदगी निखर जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए। कुछ रिश्तों को जिंदा रखने के लिए बस इतना ही काफी होता है, एक छोटा सा एफर्ट।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: इंसान को कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रात का ये पल याद दिलाता है कि कल एक नया दिन होने वाला है और हर एक नया दिन एक फ्रेश बिगनिंग, एक नया मौका देता है जिंदगी को जी भर के जीने का। तो बस आज रात को थोड़ा सा विश्राम कीजिए और अपनी बैटरी को रिचार्ज करके एक बार फिर से शामिल हो जाइए उसी जोश और जज्बे के साथ जिसकी जरूरत है अपनी मंजिल को पाने के लिए।
0: Late night grooves.
1: RM2, Radio Musti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
4: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।